सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त 2026 सुबह के 5:58 और 45 सेकंड्स होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुबह की 6 बजने को है। हिंदी में समाचार सबसे पहले सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
2: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार

0: पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। हिंदी में समाचार के बाद आज का चिंतन।
2: दुनिया में पाप बहुतायत से बढ़ने के कारण परमेश्वर ने पहले संसार को महाजल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया, पर उसमें से एक महापुरुष जो नूह कहलाता था वह परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष पाया गया। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक बड़ा जहाज बनाना जिसकी लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर महाजल प्रलय करने पर हूँ और पृथ्वी में जो कुछ है वह नष्ट हो जाएगा, पर मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं के साथ जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू प्रत्येक जाति के नर और मादा को यानी दो दो करके अपने जहाज में ले जाना ताकि वह जीवित रहें। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर जहाज बनाया। जहाज तैयार हो गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह दो दो जीवित प्राणियों को जहाज में ले आया। फिर उसके पूरे घराने के जहाज में चले जाने के बाद लगातार 40 दिन तक घनघोर बरसात हुई और एक महाजल प्रलय हो गया। पूरा संसार नष्ट हो गया, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो मनुष्य जो प्राणी बचे थे वह फिर एक संसार को बसाए, जिस संसार में आप और हम वास कर रहे हैं।

0: क्या इस दुनिया के लोग पाप से रहित हैं? जी नहीं, इनमें भी पाप की बहुतायात से लोग परमेश्वर से दूर होने लगे, मुक्ति प्राप्ति के बिना नष्ट होते रहे। ठीक उसी समय परमेश्वर ने इस जगत को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, जिन्होंने कुंवारी कन्या से आत्मा के द्वारा जन्म लिया, दुख सुख को अपने कंधों में उठाया। मनुष्य के लिए उन्होंने अपना प्राण तक दे दिया कि पापी मनुष्य उद्धार या मुक्ति को प्राप्त करे। मनुष्य नष्ट होकर नरक में जाने के बजाय स्वर्ग में प्रवेश कर सके। क्या आप और हम प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहेंगे, जो बड़े प्रेम से अपने हाथ पसार कर हर एक को बुलावा दे रहे हैं? हे परिश्रम और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस बुलावे को स्वीकार करके, प्रभु यीशु को उद्धार करता स्वीकार करके, हम इस पापपूर्ण दुनिया से मुक्ति पा सकते हैं। जब हम मसीह के बताए अनुसार समाज के गरीबों, दलितों, बीमार, लाचारों की शुद्धि लें, सभी से प्रेम भाव रखें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, सभी को भ्रातृत्व प्रेम से बांध लें, हम औरों पर दया करें, जहां तक हो सके दूसरों को क्षमा करें, ग्रहण करें, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, जैसा मसीह ने हमारे लिए किया कि हमें बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, मानवता की रक्षा के लिए।
1: दुनिया में याद, इस विषय पर हम सभी चिंतन कर रहे थे। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। मैं हूं माणिक चक्रवर्ती। आइए प्रभु स्मरण के साथ इस पावन सुबह का शुभारंभ करते हैं। श्रोताओं, जीवन की भाग दौड़ में मन अक्सर भटक जाता है। यह भजन हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति, प्रेम और अपनापन ईश्वर के द्वार पर ही मिलता है। आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं कार्यक्रम के इस पहले भजन को।

जब जीवन की राहें धुंधली पड़ जाएं और निर्णय कठिन लगने लगे, तब ईश्वर का मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। विश्वास और समर्पण का यही भाव लेकर इस अगले भजन को सुनिए।

ईश्वर का स्मरण, जी हां, इस संसार में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह संसार क्षणभंगुर है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए प्रेम, सेवा और सत्कर्म ही जीवन की सच्ची पूंजी भी है। इसी संदेश के साथ प्रस्तुत ये भजन।

वंदना भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपने दोस्त मैनिक के साथ आप सभी सुन रहे हैं। ईश्वर का स्मरण मन को स्थिरता देता है, साहस और संतोष देता है। यह भजन हमें प्रेरित कर रहा है कि जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु का नाम कभी न भूलें।

मोहम्मद अजीज, महेंद्र कपूर, अनूप जलोटा और अब सोनू निगम की आवाजों में मधुर भजनों के साथ आपने वंदना कार्यक्रम सुना। ईश्वर करे आपका आज का दिन सुख, शांति, सद्भाव और मंगल से परिपूर्ण।

0: भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे आप सभी। 6:40 और 10 सेकंड्स की ओर सुइयों का बढ़ना हुआ और अब श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी सुनिए।
1: एपिसोड 54, 5-4।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी सुन रहे थे आप सभी। आज इसकी 54वीं कड़ी थी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आगे बढ़ने से पहले कार्यक्रम विवरण, वो कार्यक्रम जिन्हें आज आपकी सेवा में प्रस्तुत होना है और रिले होना है।

0: लोक गीतों पर आधारित आज हमारा विशेष भोजपुरी लोक गीत सुनिएगा लोक रंग 7 बजे सुबह 7:20 पर काव्य धारा में आज विशेष एक कवि हम सबके साथ साकेत पाठक जी साथ ही गीत संगीत 7:30 पर रोज की तरह ही सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8 बजे और 8:15 पर प्रादेशिक समाचार 8:30 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनिए मॉर्निंग मेलोडी का लुत्फ उठाइए 8:45 पर और सुबह 9 बजे विविध भारती के कार्यक्रम सुनिए लुत्फ उठाइए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुबह 10 बजे हेलो हजारीबाग कहने आऊंगा सुविचार आज का इतिहास राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इतिहास उसके और उद्देश्य और महत्व ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी के साथ साथ एक विशेष संगीतमय कार्यक्रम विषय आज उसका पार्ट 1 क्या जादू है और मौसम की जानकारी के साथ साथ कई स्थानीय गतिविधियों और न्यूज़पेपर की सुर्खियों के साथ लपेटा हुआ हेलो हजारीबाग सुबह 10 बजे सुनिएगा जरूर 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित 12वें हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनिए इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज सुबह 11:10 पर 12 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार कई समाचारों को और विविध भारती के कार्यक्रमों को पार करते हुए एंजॉय करते हुए आप 4:30 पर जब पहुंचेंगे तो प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे एनसीईआरटी का आज का भाग संध्या 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा इवनिंग मेलोडी का लुत्फ उठाएंगे 5:02 पर 5:30 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बारी आज कृषि और हथकरघा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 2 मजबूत स्तंभ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बात होगी आज की बात में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने वाली केंद्र सरकार की योजनाएं इस पर भी बात होगी साथ में भेंटवार्ता और गीत भी संध्या 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना 6:02 पर और 6:30 पर लुत्फ उठाएंगे फिल्म संगीत का 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से फिल्म संगीत पर आधारित दैनिक कार्यक्रम 7:20 पर संध्या झनकार 7:30 पर खेलेंगे शान से खेल गतिविधियों पर आधारित यह कार्यक्रम आज संकलन एवं वाचन परमेंद्र कुमार मिश्रा और प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन के साथ चलेंगे खेल की दुनिया में 7:45 पर ऑल टाइम हिट्स सदाबहार फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम साथ ही आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 8:15 पर और समाचार संध्या न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्पॉटलाइट यहीं से और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण साथ ही 10 बजे रजनीगंधा और 10:30 पर एक फिल्म से हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर सभा का समापन तो ये थे वो कार्यक्रम जिन्हें आज आप सबकी सेवा के लिए प्रसारित तो रिले होने हैं हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर सुबह के 6:55 बस होने ही को है संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक कृष्ण प्रसादोपाध्याय अद्य राष्ट्रीय हस्ततन्तु दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् 75वें वर्षे अगस्त मासस्य 7वें दिनाङ्के भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीयान्दोलनस्य आरम्भः अभवत् सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिशर शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः। प्रधानमंत्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः स्वच्छ ऊर्जायाः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाश्च वर्धनार्थं प्रायः पादोन चतुर्विंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां परिव्ययुतां राष्ट्रिय जैव ऊर्जना योजनां गोवर्धनमिति अनुमोदितम्। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना अस्मात् वर्षादारभ्य 35-36-2000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् आर्थिक कार्यस्य मन्त्रिसभा समित्या अपि असमराज्ये राष्ट्रिय राजमार्ग 15 इत्यस्य पार्श्वे गुवाहाटीतः तेजपुरपर्यन्तं पंक्तिचतुष्टययुतस्य राजमार्गस्य निर्माणम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य गोवर्धन योजनायाः अनुमोदन विषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै ग्रामीण समृद्ध्यै देशस्य सामूहिक स्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्तीति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः उक्तवती यत् सर्वकारस्य महत्वाकांक्षा अस्ति यत् आधुनिक प्रगतिः संस्कृतिः परम्परयोः आधारिता भवेदिति। नवदेहल्यां सीडी देशमुख व्याख्यानम् 2026 इति कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः अवोचत् यत् उपभोक्तावादिनः न भूत्वा समृद्धायाः सम्पन्नायाः च भारतीय सभ्यतायाः अनुरूपं सफलं भवितुं भारतस्य नियतिः भवेदिति। भारतम् ओडिशाराज्यस्य चण्डीपुरनगरस्य एकीकृत परीक्षणक्षेत्रात् मध्यम परिधियुक्तस्य अग्निचार इति क्षिपण्याः सफलतया परीक्षणम् अकरोत्। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् प्रक्षेपणेन क्षिपण्याः सर्वाः प्रचालनात्मकतान्त्रिकमानदण्डाः प्रमाणिताः अभवन्निति। केन्द्रेण गोवाराज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य अधिनियमः 2025 इत्यस्य कार्यान्वयनम् अधिसूचितम्। येन गोवाराज्ये अनुसूचित जनजातीनां कृते विधानसभास्थानानां आरक्षणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। भारतीय राजपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीय समुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, केरलराज्ये, माहेप्रदेशे, ओडिशाराज्ये, तटीय दक्षिणान्तर्गत कर्णाटके च मेघावृष्ट्या प्रचण्ड बातेन विद्युत् प्रभावेन च सह प्रचण्डतः अतिप्रचण्डायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपेषु, झारखण्डप्रदेशे, लक्षद्वीपे, पश्चिमबङ्गप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, तमिलनाडुप्रदेशे, पुदुच्चेरीप्रदेशे, कारैकलल प्रदेशे, उत्तराखण्डप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपांत चक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, ये है आपका अपना चैनल FM 102.1 MHz। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप हमें स्ट्रीम कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आइए अब लुत्फ उठाते हैं लोक गीतों का। कार्यक्रम है लोक रंग और सबसे पहले पिया मोरा बालक कौन कह रही हैं, शारदा सिन्हा किनके बारे में बता रही हैं इस भोजपुरी लोक गीत में। आइए आत्मसात करते करते सुनते सुनते उसे अपने ख्यालों में अपनी सारी फिजाओं में महसूस करें।
3: तत्सत न तो पुरुष है न तो स्त्री, इसीलिए उस तत्सत को बालक की संज्ञा दी जाती है। प्रकृति उसे लाल प्यार देकर पुरुष बनाना चाहती है कि बीज में अंकुर फूटे। रहस्यमयी ये भावना प्राकृत जन में हास परिहास का साधन बनती है, साधक समाज में यही रहस्योन्मुखी व्यंजनाएं जगाती है।

भोजपुरी लोकगीतों का सिलसिला चल रहा है आज लोक रंग में। सुनते रहिए अपने आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से लोक रंग।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम लोक रंग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। इस भोजपुरी लोक गीत का रसास्वादन तो कीजिए।

0: तो ये था लोक गीतों का रंग, लोक रंग। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब काव्यधारा, जी हां, कविताएं जो सीधे अंतर्मन को छुएंगी और चेहरे पर कभी खुशी कभी गम और उनका संगम बिखेर देंगी। आज कवि साकेत कुमार पाठक, आइए इनसे इनकी कविताएं सुनते हैं।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है जीवन का सत्य। जीवन का है कटु सत्य, न प्रीत करो हद से ज्यादा, ले डूबेगी वह जीवन नौका को, इठलाओ न हद से ज्यादा, इठलाओ न हद से ज्यादा। जिसे समझते हो जीवन, वह तो है विष का प्याला, अपना समझ लगाते हैं गले, पर वो तो नहीं कभी पिघले। हृदय में कटुता, मुख में मिठास की मिश्री घोल, वे बोले अपना कार्य करवाने को, औरों की इज्जत तौले। कार्य पूर्णता होने पर अब वो काहे को मुख भी खोले। जीवन का है कटु सत्य, रिश्ते नाते भी बहुत बोले। भरोसा है हद से ज्यादा, काम न बने तब तक बोले, सुंदर सुंदर भावों से तब चित्त आपका भी डोले। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो काहे को मुख भी खोले, कार्य बनावन की खातिर जान की बाजी भी बोले। जब वक्त आपका आवे तो गिरगिट जैसा रंग बदले, गिरगिट जैसा रंग बदले। और मेरी अगली कविता का शीर्षक है मत रुकना चाहे घोर अंधियारा हो। मत रुकना साथी चाहे कितना भी अंधेरा हो, हृदय में दर्द और आंखों में अश्रु की धारा हो। इस जग जीवन में चाहे किसी ने भी पुकारा हो,

0: मत रुकना साथी, चाहे कितना भी अंधियारा हो। हृदय हो व्यथित और प्रतिकूल जग सारा हो, भाग्य का भी नहीं जब कोई सहारा हो। मत रुकना साथी, चाहे जीवन ही अंधियारा हो। फंसे हो समंदर में और न कोई किनारा हो, मन का प्यारा पंछी भी जब बन गया बेचारा हो। मत रुकना साथी, चाहे जीवन ही अंधियारा हो। विघ्न बाधाओं को चीर कर आगे तुम बढ़ना सदा, और हृदय में सत्य में जयते का नारा हो। मत रुकना साथी, चाहे जीवन में घोर अंधियारा हो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु का नारा हो, अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य का जब सहारा हो। जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा, चाहे कितना भी अंधियारा हो। मत रुकना साथी, चाहे घोर अंधियारा हो। पथ आलोकित हो जाएगा जब ज्योतिर्मय का सहारा हो। पथ आलोकित हो जाएगा जब ज्योतिर्मय का सहारा हो। और अगली कविता माँ को समर्पित है। माँ, तुम मुझे छोड़कर जाने कहाँ चली गई, तेरी हर एक बात मुझे आज रुलाती चली गई। माँ, तुम मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई, तेरी हर एक बात मुझे आज रुलाती चली गई। काश तेरे मन के हर एक भाव को मैं पढ़ पाता, तेरी हर एक इच्छा को मैं संपूर्णता दे पाता। तेरी ममता की छांव में हर दुख को मैं भूल गया, आज नहीं हूँ सामने माता, फिर भी सब दुख हर लेती हो। तेरी कृपा से माता आज सब कुछ है मेरे पास, पर तुम नहीं तो सब कुछ फीका सा लगता है। कहते थे आप हमेशा बूट मिला तो दांत नहीं, आज समझ में आया क्यों कहती थी आप बात वही। अफसोस और पश्चाताप के सिवा अब कुछ भी है शेष नहीं, तेरा आशीष बना रहे करता हूँ बिनती बारंबार यही। तेरे अंत समय को माता मूढ़ रह मैं जान न सका, निज पुत्र होकर भी तेरे खातिर कुछ भी न कर सका। संसार के माया जाल में रहकर सदैव हूँ भरमाया, मेरे जीवन के नैया की संपूर्णता है आप बने। दर्शन दो, प्यार दो, फिर से सिर पर हाथ रखो, तेरा आशीष व दर्शन पाने को मचल मचल रह जाता हूँ। माँ की ममता के सामने फीका है सारा जहान, जिसके सिर पर है हाथ माँ की ममता का, बाल भी बांका कभी नहीं कर सकता कोई भी सुरवीर। माँ तुझे बारंबार नमन, माँ तुझे बारंबार नमन।
1: मेरी अगली कविता है जो मेरे हृदय का उद्गार है, और मैंने शीर्षक दिया है कवि हृदय से। जहाँ सागर है वहीं न्यास है, जहाँ आस है वहीं निराश है, सोचता ही रहूं मैं, सोचता ही रहूं मैं। जहाँ धरती वहीं आकाश है, जहाँ धोखा वहीं विश्वास है, सोचता ही रहूं मैं, सोचता ही रहूं मैं। जहाँ खुशी वहीं गम है, जहाँ नफरत वहीं प्रेम है, सोचता ही रहूं मैं, सोचता ही रहूं मैं। जहाँ पाप वहीं पुण्य है, जहाँ सृष्टि वहीं शून्य है, जहाँ जीवन वहीं मृत्यु है, जहाँ मित्र वहीं शत्रु है, सोचता ही रहूं मैं, सोचता ही रहूं मैं। जहाँ आशीर्वाद वहीं श्राप है, जहाँ तुम वहीं आप है, सोचता ही रहूं मैं, सोचता ही रहूं। जहाँ नम्रता वहीं अहंकार है, जहाँ प्रकाश वहीं अंधकार है, सोचता ही रहूं मैं, सोचता ही रहूं। जहाँ सुबह वहीं शाम है, जहाँ श्वेत वहीं श्याम है, सोचता ही रहूं मैं, सोचता ही रहूं। जहाँ नर वहीं नारी, जहाँ जीवन वहीं मृत्यु, सोचता ही रहूं मैं, सोचता ही रहूं। जहाँ लड़कपन वहीं बुढ़ापा,
0: जहां लड़कपन वहीं बुढ़ापा, जहां खुशी वहीं है गम, सोचता ही रहूं मैं सोचता ही रहूं, जहां उत्थान वहीं है पतन, सोचता ही रहूं मैं सोचता ही रहूं, जहां है औनत वही उन्नत, जहां है औनत वही उन्नत, जहां है अग्रज वही अनुज, जहां है अधम वही उत्तम, सोचता ही रहूं मैं सोचता ही रहूं, जहां अपमान वही सम्मान, जहां है जल वही अग्नि, सोचता ही रहूं मैं सोचता ही रहूं, जहां आत्मा वही परमात्मा, जहां है अनुत्तीर्ण वही उत्तीर्ण, सोचता ही रहूं मैं सोचता ही रहूं, जहां है कटु वही है मधु, जहां है कटु वही है मधु, जहां है क्रोध वही है क्षमा, सोचता ही रहूं मैं सोचता ही रहूं, क्या सही क्या गलत सब एक है सब एक है, सोचता ही रहूं मैं सोचता ही रहूं। धन्यवाद।
2: एक से बढ़कर एक कविताएं जीवन के कई रंगों को एक साथ समेटकर मुस्कान बिखेरती सी, और पुरानी यादों से निकलकर वर्तमान तक पहुंचती सी ये कविताएं। काव्यधारा साकेत कुमार पाठक जिसे ये कविताएं इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। गीत संगीत का समय हुआ। गीत संगीत में आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत जगजीत सिंह के इस गजल के साथ कर रहे हैं।

समय कार्यक्रम गीत संगीत का है। चैनल आपका FM 102.1 मेगाहर्ट्ज है, यानी आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गुलाम अली की आवाज़।

गीत संगीत सुन रहे थे आप सभी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 8 बजते ही समाचार प्रभात सुनेंगे आप सभी। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज होगा, इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और सुबह 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। तो इन सभी समाचारों को सुनने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
5: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
4: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके

0: अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
1: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। यूपीआई लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
2: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को

0: की शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को

0: भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The centers notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
3: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6th August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
2: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate MDR on notified electronic payment modes. While real-time payments made through RTGS and NEFT already attract service charges, UPI transactions have so far remained exempt from such fees. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
4: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन सदन के पटल पर रखा जाएगा वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट। रांची में छात्र आंदोलन 14वें दिन भी जारी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भूख हड़ताल पर बैठने की दी चेतावनी। आज वाम संगठनों का विधानसभा मार्च। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज राष्ट्रपति और राज्यपाल उत्कृष्ट बुनकरों को करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से की स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दी 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। एकजुटता का दिलाया भरोसा। और जॉर्जिया अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में झारखंड की अंजना कुमारी ने जीते 2 पदक। रांची में 12 अगस्त से शुरू होगा राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का चयन ट्रायल। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। पहली पाली में प्रश्नकाल के बाद सरकार इस बजट को प्रस्तुत करेगी, जिस पर आगामी 10 अगस्त को चर्चा और मतदान होना सुनिश्चित हुआ है। भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आज भी सदन के बाहर और भीतर विपक्ष के भारी हंगामे का आसार है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान SDM रजत कुमार ने कहा कि प्रशासन छात्रों से ये जानने आया है कि उनके भविष्य की तैयारी में किस प्रकार सहयोग किया जा सकता है। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 13 अगस्त तक आंदोलनकारी छात्रों की मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे खुद भी अभ्यर्थियों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली की CBI जांच कराने की मांग दोहराई है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आज दोपहर 12 बजे JPSC और JSSC परीक्षा धांधली के विरोध में बिरसा चौक से विधानसभा मार्च निकालेगी। इस राज्यव्यापी प्रतिवाद में दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन का हिस्सा रही आईसा की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी शामिल हो रही हैं। आज हस्तकरघा दिवस है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आज एक विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार दिए जाएंगे तथा 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर नागरिकों से स्वदेशी आंदोलन को याद करते हुए स्थानीय बुनकरों का समर्थन करने और आत्मनिर्भर भारत के लिए कम से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की है।
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। विवस डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में देश भर से बुनकर प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
3: राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के उपलक्ष्य में जमशेदपुर के माइकल जॉन में बुनकरों का और कारीगरों का हस्तकरघा दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसमें कई राज्यों के प्रतिनिधि सांकेतिक रूप से आएंगे और यहां आसपास के लगभग 500 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे।
0: इस राष्ट्रीय सम्मेलन में बुनकरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सौंपने के लिए एक विशेष मांग पत्र का मसौदा भी तैयार किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
5: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
6: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
5: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर झारखंड सरकार ने बड़ी मानवीय पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी है। सीएम सोरेन ने एकजुटता जताते हुए झारखंड के सक्षम नागरिकों से भी असम के पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। रांची रेल मंडल के कित्तासिल्ली रेलखंड पर विकास कार्यों के कारण आज कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हटिया सांकी पैसेंजर की 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई है। वहीं वर्धमान, खड़गपुर और आसनसोल से आने जाने वाली एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनें गोमो, आद्रा और मूरी स्टेशनों तक ही चलेंगी। राज्य में कमजोर मानसून के

0: कारण गढ़वा जिले में धान की रोपनी पर गंभीर संकट मंडरा रहा है, जहां अब तक मात्र 4.29% की ही खेती हो सकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गढ़वा के जिला कृषि पदाधिकारी खुशबू पासवान ने किसानों के लिए खास सलाह जारी की है।
1: मौसम कमजोर होने की वजह से जो सामान्य अभी 31 जुलाई तक वर्षापात होती है वो करीब करीब 362 मिलीमीटर तक की होती है, जबकि अभी तक हमारे पास 212 मिलीमीटर वर्षा है। तो इसमें किसान भाई बहनों से यही अपील है, आगे एक हफ्ता का समय है, बारिश अच्छी होने की संभावना है, तो उसमें संयम बनाए रखें और अपना जो बिचड़ा है उसके लिए उचित व्यवस्था रखें।
0: राज्य की अंजना कुमारी ने जॉर्जिया अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप की विंग चून और डबल डैगर स्पर्धाओं में 2 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक सफलता पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नेहा महतो ने खिलाड़ी अंजना को उनके आवास पर सम्मानित किया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद 12 से 22 अगस्त तक रांची के खेलगांव में 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित करेगी। इस खुली चयन प्रक्रिया में राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने परीक्षा भर्ती में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जेपीएससी के मुद्दे पर सड़क से सदन तक हंगामा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरकार सिर्फ छात्रों से वार्ता पर तैयार, छात्र पत्रकार वकील को शामिल करने पर अड़े। हिंदुस्तान के शब्द हैं, छात्रों के मसले पर सदन के बाहर तकरार। प्रभात खबर लिखता है, सीआईडी ने अभय तिवारी के ससुर को लिया हिरासत में, रिश्तेदारों की तलाश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन सदन के पटल पर रखा जाएगा वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट। रांची में छात्र आंदोलन 14वें दिन भी जारी, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भूख हड़ताल पर बैठने की दी चेतावनी। आज वाम संगठनों का विधानसभा मार्च। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर आज राष्ट्रपति और राज्यपाल उत्कृष्ट बुनकरों को करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से की स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दी 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, एकजुटता का दिलाया भरोसा। और जॉर्जिया अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में झारखंड की अंजना कुमारी ने जीते 2 पदक। रांची में 12 अगस्त से शुरू होगा राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का चयन ट्रायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है।

लिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों झूमर छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
2: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, सुनिए मॉर्निंग मेलोडी। मॉर्निंग मेलोडी छोटे सरकार इस फिल्म के इस गीत के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। कुमार शानू की आवाज

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: Work from home, high salary, बस एक क्लिक में। अरे वाह!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मॉर्निंग मेलोडी सुन रहे हैं आप सभी अपने दोस्त मानिक के साथ आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कुमार शानू की आवाज, फिल्म का नाम दिल कितना नादान है।

मेलोडियस गीतों का सिलसिला चल रहा था कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी के तहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं, 9 बजते ही विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सभी सुनेंगे।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लापता लेडीज फिल्म से। प्रशांत पांडे ने इस गीत को लिखा था, राम संपत ने धुन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: लव जंजुआ और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। मयूर पुरी का लिखा हुआ, प्रीतम का संगीत था और फिल्म का नाम था सिंग इज किंग।
1: शो कदाओं के साथ थिरकते कदम
2: चलते रे, कभी बढ़ जाते
1: पूरे दबंग अंदाज में
3: दबंग, दबंग, दबंग, दबंग।
1: और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
4: ओके टिको, ओके टिको, बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
5: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
5: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
4: निकला ओ गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शांतनु मोहित्रा और फिल्म का नाम परिणीता।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक।

ए आर रहमान और साथियों की आवाजों में ये गाना आप सुन रहे थे। रांझणा फिल्म से इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। भारतीय साहित्य आकाश में एक ऐसा नक्षत्र, या कहें कि साहित्य संगीत कला और दर्शन के आकाश में एक ऐसा नक्षत्र जिसकी आभा युगों युगों तक हमारा पथ आलोकित करती हैं, वे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय साहित्यकार, शिक्षाविद और मानवतावादी गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी लेखनी से केवल शब्द ही नहीं रचे, अपितु संवेदनाओं का एक विराट संसार रच दिया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला उनकी अनुपम देन है। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने ऐसी शिक्षा का स्वप्न साकार किया जिसमें ज्ञान के साथ संस्कृति, संस्कार, सृजन और प्रकृति का अद्भुत समन्वय है। उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं गीतांजलि, गोरा और चोखेर बाली, काबलीवाला और पोस्टमास्टर आदि। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित अमर रचनाएं रविन्द्र संगीत विश्वभर में प्रसिद्ध है, जिनमें शब्द, संगीत और संवेदनाओं का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। आज कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

कहानी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, एकला चलो रे जदि तोर डाक शुने क्यों ना आसे तब एकला चलो रे। अमिताभ बच्चन और साथियों के आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। इस रचना को रचित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जे ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई। दिल में

हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊँगते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

साठ के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगा

बनाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया, वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंचपोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।

0: चांद तक चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।
0: आहा, आई मिलन की बेला देखो आई बन

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी।

को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार की बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलू सजना।

सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतिल शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतिल शिफाई ने ये कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतिल शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतिल शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।

0: गगन पर पहुँचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर दिल मेरा एक आस का।
1: जी ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त तो हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे. ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं बहारों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

सन 1982 में अपना बना लो, सन 1983 में आई अर्पण, 1985 में आपके साथ।

जी ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जी ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जी ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी आपने देश के कोने कोने से ट्यून किया अपना ये चैनल एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज। लीजिए, प्रस्तुत है हेलो हजारीबाग।
1: Nine, eight, seven, six,

0: हेलो हजारीबाग। प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग, हेलो हजारीबाग, नमस्कार, जोहार, कीजिए स्वीकार अपने दोस्त माणिक का आज 7 तारीख की इस सुबह में। जल्दी से जल्दी ऑफिस जाने की तड़प बढ़ गई है और जल्दी से जल्दी स्कूल कॉलेजेस जाने की, क्योंकि कभी भी बारिश हमला कर सकती है और ऐसे में गीला गीला होकर के पहुंचना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो हेलो हजारीबाग सुनते रहिए, कहीं से भी आप गीले नहीं होंगे, बस स्फूर्तिदायक होते चले जाएंगे और गाते गुनगुनाते चले जाएंगे, क्योंकि आज हेलो हजारीबाग में आपका दोस्त माणिक चक्रवर्ती है। सबसे पहले आज सुविचार जान ले, जीवन उतना ही फैलता या सिमटता है जितना आपका साहस। जी हां, ये जीवन भी उतना ही फैलता और सिमटता है जितना आपका साहस फैलता और सिमटता रहता है। इसलिए अपने साहस को फैलाते रहिए, सिमटाने की जरूरत नहीं। तापमान और मौसम आज का दिन का डिग्री सेल्सियस जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम और रात का 22 डिग्री न्यूनतम सेल्सियस रहेगा। आज भी बादल छाए रहने की संभावना पूरी तरह से है श्रोताओं, तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा। भागवत गीता का पाठ का आयोजन झील सेंटर में समय संध्या 6:30 बजे से होगा। साईं मंदिर में पूजा पाठ शाम 7 बजे से है और द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप ब्रह्मा कुमारी शिवपुरी शाखा सुबह 8 बजे कर सकते हैं। अभी बहुत सारी न्यूज़पेपर की सुर्खियां, स्थानीय गतिविधियां, लोकल, राज्य, देश विदेश, खेल, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, ओपीडी अपडेट्स, बहुत सारी चीजें हैं। आज का इतिहास, आज जन्मे हमारे विभूति और हमें छोड़ गए विभूतियों का मृत्यु का जो दिवस है वो भी बताएंगे, विशेष दिवस आज क्या है वो भी बताएंगे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इतिहास, उद्देश्य और महत्व के बारे में बातचीत होगी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे।

0: जादू हम सब के साथ कभी ना कभी होता ही है। जी हां, इस जादू भरी स्थिति को अब गीतों संगीत के साथ भाग एक में सुनने जा रहे हैं आप सभी। शुरू होने जा रहा है संगीत का जादू, शुरू होने जा रहा है दिल और आंखों से उतरता वो जादू जो कभी ना कभी आपने महसूस किया है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर पड़ाव में हमने जादू जो देखा, समेट कर आज भाग वन में ला रहा हूं आप सबके लिए। ये क्या जादू है?
1: हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, अब शुरू होने जा रहा है जादू। बाहरी जादू से भीतरी जादू तक की यात्रा। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी जादू से जरूर मिलता है। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी की आवाज में, और कभी किसी ऐसे चेहरे में जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया बदल जाती है और दिल कह उठता है वाह क्या जादू है। क्या जादू है कि आज के गीत शायद आपको भी उस जादू से मिलवा दे। कभी जादू टोपी से निकलता है, कभी हथेली से, और कभी मुस्कान से। कभी जादू आंखों को चौंका देता है तो कभी सीधे दिल में उतर जाता है। आज की इस महफिल में हम उसी जादू की तलाश करेंगे जो कभी खेल लगता है तो कभी प्यार बन जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की उस जादूगर से जो अपने हुनर पर भरोसा रखता है। स्वागत कीजिए हमारे इस जादूगर का।

0: कुछ सवालों के जवाब किताबों में नहीं मिलते, वे गीतों में छुपे होते हैं। देखते ही देखते सिक्का गायब हो जाए, खाली हाथों से फूल निकल आए, यही तो जादूगर की पहचान है। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा जादू हाथों में नहीं, एहसासों में छिपा होता है। यही वजह है कि हाथों की करामात से आगे बढ़कर अब दिल का दरवाजा खुलने वाला है, क्योंकि अगला जादू किसी मंच पर नहीं, किसी के प्यार में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे जादूगर से इन सवालों के जवाब तो ले लें।
1: अक्कन चक्कन दही चटोकन, आओ बच्चों आ गए बच्चन। गिली गिली पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11।

में बंद करो जखड़ो चाहे जैसे गुल होती है बुलबुल छू हो जाऊं ऐसे।

अजीब बात है, दुनिया के हर खेल को समझ लेने वाला इंसान भी प्यार के सामने अक्सर नया विद्यार्थी बन जाता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी मुलाकात और पूरी दुनिया ही बदल जाती है ना? चलिए सुनते हैं उस एहसास की कहानी जहां दिल पहली बार स्वीकार करता है कि अरे, मैं तो अब तक इस जादू से अनजाना था।

मोहब्बत की शुरुआत खतों से होती थी और इंतजार भी इबादत लगता था। पहला प्यार आंखों में खुमार और दिल की धड़कनों में अनकही धुन, लगता है जैसे कोई अनदेखा जादूगर चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे गया हो। उसी मीठे एहसास को फिर से जी

कहते हैं चेहरे सिर्फ पहचान नहीं बताते, वे भावनाओं की पूरी किताब भी पढ़ा देते हैं। दिल बस ठहर जाता है किसी की मुस्कान, कभी आंखों की चमक तो कभी सादगी देखकर। शायद वो जादू है जिसे कोई समझा नहीं सकता, कभी कुछ भी बता ही नहीं सकता।

और अब हमारी जादू की गीतों भरी कहानी वहां पहुंच गई है जहां सवाल शुरू होते हैं। दिल मान चुका है कि कुछ तो बदल गया है, लेकिन समझ है कि अब भी जवाब तलाश रही है कि आखिर ऐसा कौन सा जादू था जिसने एक पल में पूरी दुनिया का रंग बदल दिया। और ये है वो मीठी उलझन।

कहते हैं हर जादू का कोई ना कोई राज होता है, लेकिन संगीत का जादू, उसका राज शायद आज भी अनकहा है। तो सोचिएगा जरूर, आखिर क्या जादू है? इसी सवाल के साथ विदा लेता हूँ। सुनिए इस विशेष कार्यक्रम का अंतिम गीत, जो ये सवाल इस श्रृंखला के जाते जाते छोड़े जा रहा है। क्या जादू है? आखिर क्या

तो दोस्तों आज की महफिल यही तक। हाथों के कमाल से शुरू हुई यह यात्रा दिल की धड़कनों और प्यार के एहसास तक पहुंच गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी हमारे सामने, आखिर ये जादू है क्या? क्या ये नजरों का असर है, दिल की पुकार है, या मोहब्बत का अनदेखा चमत्कार? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे, क्या जादू है कि अगली कड़ी यानी पार्ट टू में। फिलहाल इस विशेष संगीत श्रृंखला से अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती को अनुमति दीजिए, नमस्कार स्वीकार कीजिए, कंटिन्यू ट्यून रखे रहिए FM हजारीबाग। आइए मिलकर कहें हेलो हजारीबाग। विशेष संगीत में प्रस्तुति थी ये, क्या जादू है, इसका भाग एक आपने सुना। और अब आज का इतिहास। दोस्तों 7 अगस्त का इतिहास भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इस दिन महान चित्रकार अवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्म दिवस को मना रहे हैं हम आज। MS स्वामीनाथन 1925 को जन्मे थे, ये भारत में हरित क्रांति के जनक और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। अवींद्रनाथ ठाकुर की बात की थी हमने, 1871 को इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक थे ये। वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 को जन्मे थे, भारत के प्रख्यात विद्वान थे ये और साहित्यकार और इतिहासकार भी। किन विभूतियों ने हमें आज के ही दिन अलविदा कहा था? 1941 को महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की मृत्यु हुई थी आज ही के दिन। 1991 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध क्रांतिकारी महिला जिन्होंने चटगांव शस्त्रागार में के लूट में भाग लिया था, कल्पना दत्त, उनकी मृत्यु हुई थी आज ही के दिन। और ऐतिहासिक घटनाओं में तो आप जानते ही हैं कि ये जो अगस्त का महीना है वो ऐतिहासिक और क्रांतिकारियों का महीना है। स्वदेशी आंदोलन 1905 के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को यह दिवस हम मना रहे हैं ताकि बुनकरों को बढ़ावा मिले, यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन 1905 को, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को आज के दिन 7 अगस्त को ही बॉम्बे, जो अब मुंबई है, के ग्वालियर टैंक मैदान में ऐतिहासिक बैठक में इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। खेल की दृष्टि से आज जेवलिन थ्रो डे है, यानी भारतीय भाला फेंक दिवस। भारत में 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की याद में यह दिवस मना रहे हैं हम।

हेलो हजारीबाग के अगले पायदान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हमारी परंपरा, हमारी पहचान। हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, भारत रंगों का देश है, पर इन रंगों को असली पहचान देने का काम हमारे बुनकरों ने सदियों से किया है। जब किसी माँ की साड़ी पर हाथों से बुनी हुई कारीगरी चमकती है, तब किसी बेटी के दुपट्टे में परंपरा की खुशबू महकती है। जब किसी किसान के कंधे पर गमछा अपनी सादगी और गरिमा के साथ दिखाई देता है, तब महसूस होता है कि हथकरघा केवल कपड़ा नहीं बुनता, बल्कि संस्कृति, इतिहास और भावनाओं को भी बुनता है। इसी गौरवशाली परंपरा को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। सात अगस्त का दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस समय देशवासियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी उत्पादों, विशेषकर हाथ से बने कपड़ों को अपनाने का संकल्प लिया। यही आंदोलन आगे चलकर आजादी की लड़ाई का एक मजबूत आधार बना। इसी ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में भारत सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश के लाखों बुनकरों को सम्मान देना और लोगों को भारतीय हथकरघा उत्पादों के प्रति जागरूक करना था। क्या है हथकरघा? हथकरघा वह पारंपरिक करघा है जिसे मशीन से नहीं बल्कि इंसान अपने हाथों और पैरों की सहायता से चलाता है। इसमें बुना गया हर धागा मेहनत, धैर्य और कला का प्रतीक होता है। यही कारण है कि हाथ से बने वस्त्र केवल कपड़े नहीं होते, बल्कि उनमें कारीगर की आत्मा और पहचान बसती है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्देश्य केवल एक दिवस मनाना नहीं है, इसके कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला, हमारे बुनकरों और शिल्पकारों का सम्मान करना। दूसरा, युवाओं को भारतीय हस्तनिर्मित वस्त्रों की महत्ता से जोड़ना। तीसरा, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। चौथा, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत करना। और पांचवा, हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाना। साथियों, हम भी हाथ से बुना हुआ कोई वस्त्र खरीदते हैं, तब हम केवल एक कपड़ा नहीं खरीदते, बल्कि किसी परिवार की आजीविका को सहारा देते हैं। चलते चलते अब बात करें अपने झारखंड की। झारखंड केवल खनिज संपदा का राज्य नहीं है, बल्कि यह समृद्ध लोक संस्कृति और हस्तशिल्प की भी भूमि है। यहाँ की जनजातीय परंपराएं, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, बांस और लकड़ी की कला, तसर, रेशम तथा हाथ से तैयार किए गए वस्त्र देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखते हैं। झारखंड के कई क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बुनाई और हस्तशिल्प के कार्यों से जुड़ी हुई हैं। उनके बनाए उत्पाद न केवल परिवार की आय बढ़ाते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी जीवित रखते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को प्राथमिकता दें। त्योहार हो, शादी हो या कोई विशेष अवसर, यदि हम हाथ से बुने भारतीय वस्त्र पहने तो हमारे बुनकरों के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। बता दूं कि आज आधुनिक मशीनें बहुत तेजी से उत्पादन कर रही हैं, लेकिन हाथों से बुनी हुई चीजों की आत्मीयता और गुणवत्ता आज भी अलग पहचान रखती हैं। दुनिया भर के लोग आज भी प्राकृतिक, टिकाऊ और हस्तनिर्मित वस्तुओं की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में भारतीय हथकरघा उद्योग के सामने नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। तो चलिए बुनकरों और शिल्पकारों का सम्मान करें और अपने बच्चों को भी यही बताएं कि भारत की असली पहचान केवल बड़े उद्योगों से नहीं, बल्कि उन मेहनतकश हाथों से भी है जो धागों से सपनों को बुनते हैं। अंत में महान कवि कबीरदास की भावना याद आ रही है, बताता हूँ। धागा प्रेम का ऐसा बुनो जो दिलों को जोड़ता जाए, मेहनत का हर ताना बाना भारत का मान बढ़ाता जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं माणिक चक्रवर्ती
इस चर्चा से विदा लेता हूँ। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने देश के हुनर, अपने देश के कारीगर और अपने देश के हथकरघा का सम्मान कीजिए। नमस्कार।

ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी। नमस्कार, एक और चर्चा में मैं हूं माणिक चक्रवर्ती। आप सुन रहे हैं हेलो हजारीबाग। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी बैंक बैलेंस, किसी बड़ी नौकरी और किसी आलीशान मकान या महंगी गाड़ी की बात नहीं करने जा रहा हूं। आज बात उस पूंजी की, जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई लूट सकता है, न जिसकी कीमत कभी कम होती है। वह पूंजी है ईमानदारी। कहते हैं ना, धन खो जाए तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य खो जाए तो बहुत कुछ, लेकिन चरित्र और ईमानदारी खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। आज के दौर में अक्सर हम सुनते हैं, भाई ईमानदारी से कुछ नहीं होता, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, अगर दुनिया से ईमानदारी खत्म हो जाए तो क्या किसी रिश्ते पर भरोसा रहेगा? क्या किसी डॉक्टर पर विश्वास रहेगा? क्या किसी शिक्षक, किसी न्यायाधीश, किसी पत्रकार या किसी अधिकारी पर भरोसा रहेगा? ईमानदारी केवल पैसे का हिसाब नहीं है, ईमानदारी का अर्थ है अपने काम, अपने वचन और अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा होना। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दिखावा बहुत है और सच्चाई कम दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी खुशियों का प्रदर्शन करते हैं लेकिन अपने संघर्षों को छिपा लेते हैं। सफलता की चमक दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे की मेहनत और ईमानदारी कम दिखाई देती है। एक शेर याद आ रहा है, सच की राह भले ही कठिन दिखाई दे, मंजिल उसी को मिलती है जो झुकना ना सीखे। दौलत से घर बनते हैं, ईमानदारी से परिवार बनते हैं, पद से पहचान मिलती है लेकिन चरित्र से सम्मान मिलता है। आइए आज स्वयं से एक छोटा सा वादा करें, हम चाहे जहां हो, जिस भी जिम्मेदारी में हो, ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाए रखेंगे। इसी विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ मुझे माणिक चक्रवर्ती को इस चर्चा से दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। समय अभी 10 मिनट और भी है, हेलो हजारीबाग चल रहा है।

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों की भूख हड़ताल जारी। वार्ता और मांग पत्र तैयार करने में जुटे रहे छात्र। सरकार ने 5 नाम मांगे, छात्रों ने भेजे 11। नहीं आया बातचीत का बुलावा। मांग पत्र तैयार है, छात्र की है ये प्रमुख मांगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम का कट ऑफ जारी किया जाए। अंतिम परिणाम में ओरिजिनल और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का स्कोर कार्ड दिखाया जाए। पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का OMR और मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए। इस तरह के और भी कई मांग हैं विद्यार्थियों के। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन गुरुवार को 13वें दिन भी जारी रहा। आज 14वां दिन है। सरकार की ओर से वार्ता के लिए 5 छात्रों के नाम मांगे गए। छात्रों की ओर से गुरुवार को 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के नाम भेजे गए। छात्र रात 9 बजे तक बुलावे का इंतजार कर रहे थे। और हजारीबाग केंद्रीय कारा में युवाओं को आत्मसमर्पित नक्सलियों का कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। 15 दिवसीय फास्ट फूड मेकिंग ट्रेनिंग शुरू। आत्मनिर्भरता इससे बढ़ेगी। जेपी सेंट्रल जेल के 32 बंदी सीखेंगे डोसा व समोसा बनाना। बारिश का मौसम है, वज्रपात से लगातार आपको सुरक्षित रखने के लिए चेतावनियां जारी की जाती हैं। बारिश थमते ही बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ पेलावल ओपी थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में। जी हां, कंचनपुर में धन रोपनी कर रहे दंपत्ति की वज्रपात से मौत हो गई। गांव में नहीं जला चूल्हा। विभाग की अपील है, किसान मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही खेतों में कार्य करें। अगस्त के 6 दिन में वज्रपात से 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।

खेल की दुनिया में श्रीलंका 11 और भारतीय टीम के बीच सुबह 10 बजे से 3 दिवसीय मुकाबला शुरू हो चुका है। टीम इंडिया की आज से अंतिम तैयारी है। 15 अगस्त से शुरू होने वाली सीरीज की तैयारी कर रही है टीम। 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट खेलेगा भारत। कप्तान सहित पूरी टीम नई है।

और इधर पटना से एक खबर कि सूबे में 1000 खनन सिपाहियों की होगी भर्ती। सूबे में अवैध खनन रोकने के लिए अलग से सिपाही नियुक्त किए जा रहे हैं। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग 1000 खनन सिपाहियों की नियुक्ति करने जा रहा है।

एक और खबर, देश में नया बनाया जाएगा रसोई गैस और नेचुरल गैस का रिजर्व। एलपीजी सिलेंडर पर एक नया शुल्क लगाने की हो रही है तैयारी, बढ़ेगा बोझ। हर साल 1.5 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी, अगले 10 साल में पूरी होगी भंडारण योजना। अभी नहीं है एलपीजी व एलएनजी का भंडार। और इधर भारत बना अर्निस वर्ल्ड चैंपियन, झारखंड के खिलाड़ियों ने गोल्ड समेत जीते 6 पदक।

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बरही प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही मतदाता सूची में नामों के सत्यापन और आवश्यक सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ट्रैफिक की बात करें तो हजारीबाग शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार वाहन चेकिंग जारी है। इसके लिए शहर के विभिन्न चौराहों पर चयन करके ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत एसपी अमन कुमार के निर्देश पर शहर के चौक पर व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां विभिन्न तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 दर्जन लोग पकड़े गए। उन्हें चालान काटकर छोड़ा गया। उन्हें फिर से गलती नहीं दोहराने की चेतावनी भी दी गई। उक्त अभियान का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक CCR कर रहे थे। उसमें सऊदीन सुरेंद्र प्रसाद शर्मा यातायात, 04 पुलिस पदाधिकारी और 08 गृहरक्षक की टीम गठित की गई। उक्त गठित टीम द्वारा पुलिस उपाधीक्षक CCR के नेतृत्व में वाहन चेकिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें बिना हेलमेट, ट्रिपल लोड, मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन चलाने वाले लोग और नो पार्किंग में खड़े ऑटो, टोटो एवं अन्य वाहनों को पकड़ा गया। उनका चालान काटा गया। बताया जा रहा है कि अभियान लगातार जारी रहेगा। CCR DSP ने सख्त हिदायत दी है कि शहर में स्टंट करने वाले, साइलेंसर बदलकर चलने वाले और विस्फोटक आवाज लगाने वालों को कदापि नहीं बख्शा जाएगा। अब नाबालिग अगर वाहन चलाते पकड़े गए तो उसकी जिम्मेदारी अभिभावक की होगी। तो ट्रैफिक पुलिस ने शहर में चला दिया है वाहन चेकिंग अभियान। आप रहें सावधान।

और अब 3 मिनट से भी कम बचा 1 घंटे का ये सफर जिसे हम सभी कह रहे थे हेलो हजारीबाग। चलते चलते आज का सुविचार। हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, आज का सुविचार ये कि रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है, भरोसा। आज सुबह यही गांठ बांध लीजिए, कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन आपकी जीत का कारण बन जाती है। मौका देती है किस्मत, लेकिन चौंका देती है मेहनत। छोटी छोटी चीजों को करने में कभी भी संकोच मत कीजिए, क्योंकि आप जो छोटी छोटी चीजें अभी करते हैं ना, वे बाद में बड़ी जीत की ओर ले जाती हैं हमें।

0: और साथियों नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए और हमेशा रोज सुबह 10 बजे ट्यून रखिए आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र, क्योंकि हम रोज कहने आते हैं आपको हेलो हजारीबाग। तो ये थी हेलो हजारीबाग की आज की कड़ी। तो इस कड़ी को आपने किस तरह से लिया, कैसे आपने आज की चर्चा में भाग लिया, क्या जादू है का पहला भाग सुना, बताइएगा हमें जरूर। हम मिलेंगे फिर आपको कहने हेलो हजारीबाग अगली सुबह। तब तक के लिए अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती को अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से। नमस्कार। आप सभी सुन रहे थे हेलो हजारीबाग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz। सुबह के 11 बजने को ही है, कुछ ही सेकंड्स में 11 बजेंगे और आप सभी विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: कहानी सुनाने उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस छिपका दी जाती।
2: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है रंग तरंग।
2: रंग तरंग।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं पूजा नारायणिया। आइए आपको इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत झांझरिया एल्बम से, ये गीत है हंसराज हंस ने इस गीत को गाया है, इब्राहिम अश्क के बोल हैं, अली घनी ने इस गीत को कंपोज किया है।

रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी की जबान इस गजल एल्बम से पद्मश्री पद्मजा फैनानी जोगलेकर की आवाजों में। संदीप गुप्ते का लिखा गीत महेश खानोलकर का कंपोज किया हुआ।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित 12वें हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनेंगे आप सभी बस थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: यह आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामय अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसीआर खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन, and we extend our heartiest greetings on the 12th National Handloom Day. The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognizes the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom awardees and National Handloom awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार

0: हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement which launched on the 7th of August 1905 that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since

0: 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी और विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्वभर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
0: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confirm.

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, deviyon aur sajjanon, main is 12ve rashtriya hathkarga divas par maniye rashtrapati ji ka swagat karti hoon।

0: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया।
1: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब हम बढ़ते हैं आज के इस समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें।
0: और अब 12वें राष्ट्रीय
1: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ।
0: माननीय राष्ट्रपति
1: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं, ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी। मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर। हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी। आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी।

0: हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारिमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के

0: सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा.
1: Yes, you are absolutely right. And the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving. And the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi. And to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves. And the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Shrimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari. Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari. Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi, Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sadi, Shri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sadi, Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sadi, Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sadi, and Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025, and she is conferring the National Handloom Awards 2025.
2: Marketing training se hi agle vijeta hai Tamil Nadu se Messrs. 31 Kovilwadi Hathkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन. विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट. आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है. सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई. आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है. इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें.

धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।

0: is a proud moment for all our citizens who are involved with the handloom sector. And the Honorable President has also released two publications. The first one, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and another coffee table book, the Handloom Awards Book 2025. And as we mentioned today, that the Honorable President of India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Chaudhary.
1: All right, Assam. Time to get and one NRI task done.
0: Weaving.
1: And you thought I'm going out?
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganchi Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat Sadi. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half and half Janarani Sadi. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani
2: Sadi.
0: And we have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
2: पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा, आपकी सादगी, संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। As we gather here today, we remember 7th of August 1905 when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, पिछले वर्ष राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह के अपने संबोधन में आपने जीआई टेक के महत्व पर भी विशेष बल दिया था और अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। The true enduring legacy and global recognition of Raj Singh ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile DC Handlooms and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. अंततः आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हमारे बुनकरों को सम्मान, पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे। धन्यवाद। जय हिंद।
3: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को। माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
4: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहां आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12वें हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
0: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द Rashtrapati Bhavan Cultural Center. The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister

0: Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
1: जब 10 साल बाद आता तो 43 लाख और जब उसके बाद 10 लाख आता तो 35 लाख आखिर क्यों? आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अप स्किलिंग करते हैं। अप स्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं, 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35 लाख आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है और केवल

0: ऑनलाइन नहीं छोड़ा है, बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीभर हमारे साथ जुट चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीभर भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीभर यानी बिचौलिया, मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCH से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है, 50 हैंडलूम, 50 हैंडीक्राफ्ट। क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके, हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी IIT दिल्ली से MOU किया है, केवल MOU नहीं किया है, अभी 100 बीभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू। उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। AI टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो AI टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिव सागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 PPM पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 PPM पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: मेरा लक्ष्य है 5 लखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें।

0: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुराकार डिजाइनर देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजन, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। ଆଜି ଆସିଅଛି ନୂଆ ଯୁଗାନ୍ତର ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାରବର ଖାଅ ଭାତ ମୁଠେ ଘର ଢେଙ୍କି କୁଟା ପିନ୍ଧ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ହାତେ କାଟି ସୂତା ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଜ ନୟା ଯୁଗ ଆ ଗିଆ ହେ ଇସିଲିଏ ଯେତେ ଜମିନ ହେ ଜମିନ ମେ ଖେତି କର ଅନାଜ ଉଗାଓ ଔର ଆପନା ଖାଓ ଆପନା କର ଆପନା ଖାଓ ଔର କର୍ପାସ ଏତନେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋତା ହେ ଇସିଲିଏ ୱହାଁ ସେ ଥ୍ରେଡ୍ ନିକାଲୋ ଔର ବୁନାଇ କର ଔର ଖୁଦ କା ପହନୋ ଆଜ ବି ମେ ଜୋ ସେଭେନ କ୍ଲାସ ତୋ ପଢ଼ତି ଥି ଫର କେତନେ ସାଲ ହୋ ଗିଆ ହେ ଲେକିନ ଓ ଦୋ ପଙ୍କ୍ତି ମେରେ ଦିଲ ମେ ହେ ଅଭି ଭି ମୁଝେ ୟାଦ ହେ ଇସିଲିଏ ଆଜ ଜୋ ଦେଖତି ହୁଁ କେବଲ ଓ ବାଲା ମୋଟେ ବାଲା ସୂତ ନହିଁ ଆଜ ଇତନେ ଫାଇନ ଫାଇନ କପଡ଼ା ବନାତେ ହେ କୋଇ ଏକ ଲାଖ ଦୋ ଲାଖ ପାଞ୍ଚ ଲାଖ ତୋଫେ ତୋ ଏହି ପେ ତୋ ସୋଫ ହେ ହମ ବିଦେଶ ମେ ବିଦେଶ ମେ ନଜର କ୍ୟୁ ଡାଲେ ଦେବୀ ଓ ସ୍ୱଜନ ସନ୍ଥ କବୀର ହତକର୍ଦ୍ଧା ପୁରସ୍କାର ସେ ଆଜ ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ ବରିଷ୍ଠ ବୁନାକାର ବିଶେଷ ବଧାଇ କେ ପାତ୍ର ହୁଏ ଇନ ସଭି ନହିଁ ଆପନେ ଦଶକ କେ କାମକାଜୀ ଜୀବନ ମେ କେବଳ ଆପଣ କୌଶଲ କୋ ହିଁ ନହିଁ ସବାରା ବଲକି ଉନ୍ହୋନେ ସେକଡ଼ୋ ବୁନାକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଔର ପ୍ରେରିତ ଭି କିଆ ହେ ବୁନାକାର କି ନଈ ପିଢ଼ି ତିଆର କରନେ ମେ ଇନକି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ହେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖୋଦକର୍ତ୍ତା ପୁରସ୍କାର ପାନେ ବାଲେ ସଭି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଔର କର୍ମଠ ବୁନାକାର କୋ ଭି ମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବଧାଇ ଦେତି ହୁଁ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ସେ ଲେକର ପଶ୍ଚିମ ତକ ଔର ଉତ୍ତର ସେ ଲେକର ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ତକ ଦେଶ କେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ କି ହତକର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀୟ କେ ବେଜୋଡ଼ ଉଦାହରଣ କା ସର୍ଜନ ଉନ୍ କର୍ମଷ୍ଟ ବୁନାକାର କୋ କିଆ ହେ ଇନକେ ଉତ୍ସାହ ଔର କୌଶଲ କି ମେ ବହୁତ ବହୁତ ସରାହନା କରତି ହୁଁ ହାତ କାତ କୁଦ କା ହମାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ କେ ଗେହରା ଜୁଡ଼ା ହେ 7 ଅଗଷ୍ଟ 1905 କୋ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କା ଔପଚାରିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଆ ଥା ବଙ୍ଗାଲ ବିଭାଜନ କେ ବିରୋଧ ମେ ଶୁରୁ ହୁଏ ଇସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଔର ବିଶେଷ ରୂପ ସେ ଦେଶ
2: ଆପକୁ ବତା ଦେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କେ ଜୋ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାକାର ହେ ଇସମେ ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
1: मनाने जा रहे आ रही है अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन बड़ी नहीं रहा ये उत्सव है हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्र वेवर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है देवी और स्वजनों हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं ବଲବତୀ ହୋଇ ହେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କ୍ଲାଷ୍ଟର୍ସଙ୍କ ଆଧୁନିକ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକୀ ଔର ସାମୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଧିଓ ସେ ଯୋଡ଼ା ଯା ରହା ହେ ବୁନକାରଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାନେ କେ ଲିଏ ଅନେକ ପାରଦର୍ଶୀ ଉପାୟ ସରକାର ନେ ହାତ ମେ ଲିଏ ହେ ବୁନାକାରଙ୍କ ଉନକି ମେହନତ କା ପୁରା ଲାଭ ସିଧେ ମିଲନେ କି ରାସ୍ତେ ଖୁଲେ ହେ ଯୋ माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकर्ता को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सर और कौशल से

0: नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नई अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकर्ता प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शुएस यार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक हूं बहारों का, इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
4: ओ केटिको बर्फ बदन है।
3: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
5: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
3: जी,
5: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
3: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
6: निकला ओ गड्डी लेके
3: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर शोक अदाओं के साथ।

0: डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
1: एक और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: ब्रेक से पहले आपने सुना था आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे अर्पण फिल्म से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल आज यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको सुनवाए फिल्मकार जे ओम प्रकाश की फिल्मों के गीत, क्योंकि आज था उनकी याद का दिन। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन भले ही हमने किया हो, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा खेल आप सभी के साथ गीतों के साथ हम खेलते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए आज के गीतों की झलक साझा आपसे करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। ये है इस सफर की खास बात। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले पढ़ देते हैं आज की इबारत यानी टेक्स्ट। सावन के झूले पड़े भीगी भीगी रातों में भी पिया अनजान है सपनों की सूखी फुलवारी, तन में पिया दिन भर मुझे यूं सताए, दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाए, दर्पण में देखूं जिसे वो सपने सच्चे लगने लगे, शाम सवेरे दिल में तू रहता है, तुझसा दिल का हंसी पहले देखा कहां, दिल ने कहा नहीं माना और एतबार कर लिया, यानी कहा ना माना और दिल ने एतबार कर लिया, बेखुदी में आ गए पास हम और अब ना होंगे जुदा। तो ये थी हमारी आज की इबारत। इनसे जुड़े कई कमेंट्स हमें आ गए हैं। एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले पड़ चुके हैं लेकिन प्रेमी पिया अनजान है और दिल के सपनों की सूखी फुलवारी ने उम्मीद और अरमान को निराशा से भर दिया है, फिर भी दो नैनों ने जो ख्वाबों की महफिल सजाई है उसमें प्यार की रोशनी धीरे से जगमगाई है जिससे दिल को एतबार हो गया कि अब वो फिर से जुदा नहीं होंगे। सूखी फुलबारी यानी निराशा के बावजूद नए सपने सजाना, यानी कि मन में आशा रखना, मन की अदम्य प्रेम भावना को दर्शाता है। वहीं अनजानेपन के बाद भी दिल का एतबार करना प्रेम की सहज और पवित्र प्रकृति को उजागर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की बारिश का एक अजीब सा स्वभाव है, यह हमेशा बाहर नहीं बरसती, अक्सर भीतर भी भिगाती रहती है। झूले डलते तो हैं पेड़ों पर लेकिन झूलता मन है, दर्पण में चेहरा अपना दिखाई देता है मगर आंखें किसी और की परछाई ओढ़ लेती है, ख्वाब भी बड़ी खामोशी से आकर दिल के आंगन में बैठ जाते हैं और एक अनकहा नाम पूरे दिन सांसों में गूंजता रहता है। फिर एक दिन दिल बिना किसी दलील के यकीन कर लेता है कि मोहब्बत का रास्ता मंजिल से नहीं इंतजार से होकर गुजरता है। सावन हर साल लौट आता है यह याद दिलाने के लिए कि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, उन्हें छूने से ज्यादा महसूस किया जाता है। कितनी सुंदर बात आपने कही है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये सावन जो है ऋतु नहीं, हृदय की वह अवस्था है जहां हर बूंद किसी अनकहे नाम का उच्चारण करती है, झूलों की रुंझुन भीगी रातों की नमी दर्पण में उभरती छवि और आंखों में सजती ख्वाबों की महफिल सब मिलकर उस प्रेम की कहानी कहते हैं जो पहले एहसास बनकर उतरता है फिर विश्वास बनकर दिल में ठहर जाता है। यहाँ विरह भी मधुर है, प्रतीक्षा भी सुंदर, क्योंकि प्रेम का सबसे उजला रूप उसी धैर्य में जन्म लेता है जहां मिलन से पहले स्मृतियां साथ निभाती हैं। अंततः यह इबारत बताती है कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं भीतर धीरे धीरे बरसते सावन से पहचाना जाता है, एक ऐसा सावन जो जीवन को भीगने के साथ साथ महकाता भी है, यानी कि महकना सिखा देता है। जी हाँ, बिल्कुल।
तो श्रोताओं, सबसे पहला गीत आ रहा है सफर का, आपके लिए जुर्माना फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया है आर डी बर्मन ने।

0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से 1:10 हुए हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भारी हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा में 8,399 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश। जेपीएससी मामले पर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त तक स्थगित। राज्य में एसआईआर के तहत 63 लाख से अधिक वोटरों को चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस। विसंगतियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय की विशेष पहल। 9 अगस्त को रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक पर सीआरपीएफ बैंड की गूंजेगी देशभक्ति धुन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई, कहा 70% महिला कार्यबल के साथ यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता का बना मजबूत आधार। और रांची मौसम केंद्र ने अगले 3 घंटों में बोकारो, धनबाद, गुड्डा और गुमला सहित 8 जिलों में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में आज भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया।
2: अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 8,399 करोड़ 31,11,000 रुपए मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ।
1: इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा और एनडीए विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। इस अनुपूरक बजट पर आगामी 10 अगस्त को सदन में विस्तृत चर्चा और मतदान होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज जेपीएससी प्रकरण को लेकर एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक नीरा यादव ने परीक्षा लीक मामलों को लेकर सरकार की नियत पर सवाल उठाए।
3: देखिए, सरकार इसलिए वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रही है, इन्हें डर है कि हमारी बात लीक ना हो जाए। अरे बंद कमरे में क्यों बात करेंगे, ओपन करिए ना। दिल्ली में केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक में त्वरित कार्रवाई निष्पादन करने का जो कार्य किया है, वैसे कार्य ये सरकार करे।
1: नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने छात्रों के वार्ता प्रतिनिधिमंडल में पूर्व महाधिवक्ता को शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस आंदोलन के पीछे भाजपा और कोचिंग माफिया की साजिश होने का आरोप लगाया है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए छात्रों से अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखने की अपील की।
4: सरकार का स्पष्ट मंतव्य, छात्रों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल का जब सूची आएगा, सरकार वार्ता करेगी और समाधान करेगी। छात्रों से भी एक अपील, आप अपने इस स्वच्छ भविष्य के आंदोलन को राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में गिरवी न रखें।
1: रांची में जारी छात्र आंदोलन के बीच भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनन फानन में एम्बुलेंस और विरोध कर रहे अन्य साथियों की मदद से उसे रांची सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी रांची सदर एसडीओ को भी दे दी गई है। राज्य में एसआईआर के तहत चुनाव आयोग तार्किक विसंगतियों को नो मैपिंग श्रेणी के 63 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजकर जवाब तलब करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने ड्राफ्ट मतदाता सूची के दावों एवं आपत्तियों के त्वरित निस्तारण के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। रांची स्थित सीएमपीडीआई ने सीएसआर पहल के तहत झारखंड के 60 बेरोजगार युवाओं को फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन का मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण देने के लिए फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए हस्ताक्षरित इस प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीआई ने 73,62,000 रुपये मंजूर किए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय की पहल पर 9 से 15 अगस्त तक रांची सहित झारखंड के विभिन्न स्थानों पर विशेष बैंड प्रस्तुतियों के जरिए देशभक्ति की धुनें गूंजेंगी। रांची के अलबर्ट एक्का चौक पर 9 अगस्त को सीआरपीएफ बैंड की प्रस्तुति होगी, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे। श्री सेठ ने अलबर्ट एक्का चौक पर आयोजित होने वाली देशभक्ति प्रस्तुति के लिए सभी नागरिकों को आमंत्रित किया है। राज्य वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा और रामगढ़ में AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की है। आधुनिक तकनीक पर आधारित

0: दिवस पर आयोजित होने वाले गरिमामय एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का विशेष निमंत्रण मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित इस उच्च स्तरीय समारोह के लिए यह प्रतिष्ठित बुलावा मिलने पर श्री कुमार बेहद उत्साहित हैं।
1: हमारा नॉमिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से हुआ था, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन माइनिंग मिनरल अर्थ साइंसेज क्रिटिकल मिनरल एरिया में है। इसके कारण हमारा नॉमिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम के यहाँ, और हमें प्रेसिडेंट मैडम के यहाँ से एक इन्विटेशन आया है एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में उत्कृष्ट शिल्पकारों को सम्मानित करते हुए हथकरघा उद्योग को भारत की अनमोल सांस्कृतिक धरोहर एवं महिला सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम बताया। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में देश की बुनाई परंपराओं पर 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए।
2: वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बधाई देते हुए हथकरघा क्षेत्र को महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा माध्यम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा किया कि देश के हथकरघा उद्योग में कार्यरत लगभग 70% महिलाएं हैं, जो ग्रामीण आजीविका को सीधे मजबूत कर रही हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 370 अंक गिरकर 78,584 जबकि निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,582 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए अगले 3 घंटों के भीतर राज्य के 8 जिलों बोकारो, धनबाद, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारी हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा में 8,399 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश। जेपीएससी मामले पर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त तक स्थगित। राज्य में एसआईआर के तहत 63 लाख से अधिक वोटरों को चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस। विसंगतियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय की विशेष पहल। 9 अगस्त को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सीआरपीएफ बैंड की गूंजेगी देशभक्ति धुन। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा 70% महिला कार्यबल के साथ यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता का बना मजबूत आधार। और रांची मौसम केंद्र ने अगले 3 घंटों में बोकारो, धनबाद, गोड्डा और गुमला सहित 8 जिलों में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: एक श्रोता कहते हैं कि लगता है कि घटाओं से सजे मेघालय में रिमझिम फुहारों वाली गीतों की मालाओं से हो रही है आज हमारी मुलाकात। पिया मिलन की उत्कंठा और मनमीत की प्रतीक्षा करने वाले गीतों की चमकीली बूंदें इबारत में दिखाई दे रही हैं और उन्होंने कुछ गीत भी हमें लिखे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेमिका कह रही है सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, लेकिन पिया अनजान है कि कभी जल सकता है जिया भीगी भीगी रातों में। ये तो पता तब पता चलेगा जब दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाएंगे, तब वो भी गुनगुनाने लगेंगे नैनों में दर्पण है दर्पण में कोई देखूं तुझे जिसे सुबह शाम। ऐसे ही कुछ कहता है ये सावन। क्या कहता है? यही कि शाम सवेरे दिल में तू रहता है, फिर क्या बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम। दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ जाने का समय होते ही पास आ गए हम। क्या बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने हमारी ही इबारत को

ने अंदाज में लिख दिया है। और सावन में रिमझिम फुहारों की बूंद में जब पिया की याद आती है और हसीन ख्वाबों में डूब जाते हैं, मिलन की आस जाग उठती है कि तुम आ जाओ और फिर जुदा ना होंगे। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई का एहसास दिल को बहुत तड़पाते हैं और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को और बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक की बजाय सुरीली उदासी से भर देती है। सावन के सुहावने मौसम में अपना पिया मिलन की पुरानी यादों को ये मौसम जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। बिल्कुल ये मौसम है ही प्यार का। श्रोताओं, जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उन्हें याद रखते हुए आप हमें संदेश भेजते रहिए। हमें आपके संदेशों का बेसब्री से रहता है इंतजार। आपकी ये अनमोल यादें हम तक उस वक्त की भीनी भीनी सौंधी सी खुशबू पहुंचा रही है, सावन की फुहारों के साथ।

0: इसी गीत के साथ लेते हैं कुछ संदेश।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स

0: और इंटरनेशनल स्टार से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय,
4: श्रोताओं, प्रेम की कोमल अनुभूतियों को हम शब्दों में कह नहीं पाते, पर ये गीत सब कुछ कह जाते हैं। गीत कितना अच्छा माध्यम है ना प्रेम को व्यक्त करने का। अच्छा बताइए, अगर गीत ना होते तो कैसा होता जीवन, प्रेम का इजहार कैसे होता? और सावन के मौसम में गीत ही नहीं सुने सुनाए जाते तो कैसा होता सावन, ये बताते चलिए। फिलहाल हम लेते हैं हमारे श्रोताओं के संदेश। एक श्रोता कहते हैं कि आज अनूठे पद्यांश को पिया मिलन की आस के साथ पिरोया गया है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जब पिया मिलन की आस जागती है तो मन का हर कोना पुलकित हो उठता है। प्रकृति जहां ठंडी बूंदों से भीग रही होती है, वहीं प्रेमी का मन मिलन की उत्कंठा में सुलग रहा होता है। बरसती बूंदों में छुपा है सदियों का इंतजार, बाहर सावन की फुहार है, भीतर विरह की आग। ये कजरारी रातें और ये रिमझिम सा सावन, सावन तो आ गया बस तुम रह गए हो जाने कहां, क्या बात है। ऐसे ही अगले श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत एक गजब इबारत है, कभी सावन से पिया अनजान है तो कभी भीगी रात तो कभी सूखी फुलवारी। इस तरह से उन्होंने हमारी ही इबारत को अपने शब्दों में पिरोया है। और हमारे और श्रोता जो कह रहे हैं कि दिलचस्प संदेशों से सजे विविध भारती के सबसे लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर कार्यक्रम ये चल रहा है। और एक श्रोता ने इतनी प्यारी बात कही है कि मेरी प्यारी प्यारी विविध भारती को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दूर, यूं तो हमने लाख चैनल सुने हैं विविध भारती सा नहीं सुना, ये बारिश तो सिर्फ 4 महीने होगी, क्या बात है। बस सावन के गीत आपको विविध भारती पर सुनने को मिलते ही रहेंगे, है ना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन का मौसम बड़ा अनोखा होता है, बाहर पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तो मन भी यादों और ख्वाबों के झूलों पर झूलने लगता है। कभी कोई अपना याद आता है, कभी दर्पण में कोई सपना मुस्कुरा देता है, दिल बार बार उसी का नाम लेता है जिससे शायद अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया। यही तो पुराने फिल्मी गीतों की खूबसूरती है, वे हमारे मन की उन अनकही भावनाओं को भी सुर दे देते हैं जिन्हें हम अक्सर शब्दों में नहीं कह पाते। क्या बात है।

हमारे कुछ श्रोता ये भी कह रहे हैं कि रिमझिम की फुहार बरस रही है और रिमझिम के बीच में अपनी कविता आपसे साझा करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप कविता पढ़ेंगे। अच्छा, तो कविता तो बहुत बड़ी है, हम शायद इसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इसे देख जरूर रहे हैं।

विविध भारती का सुरीला सफर है, कैसा सफर, हर कोई जाना है, हर कोई माना है, होती रहती है बातें प्यार मोहब्बत भरी, मौसम पहाड़ों नदियों से भरी, बातें जब होती लगती हैं खूब सुंदर न्यारी, होती है बड़ी सुहानी सुरीली, सुनकर दिल को होती है तसल्ली, ये श्रोता कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि गांव हमारा बहुत सूखा पड़ा था, फिर कुछ ही दिनों में बरसात की फुहार आई और फिर जमकर बरसा सावन, फिर हम मन हमारा खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा आया सावन झूम के, फिर सावन के झूले पड़े और झूले देखकर होंठ गुनगुनाने लगे कि सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात है? लेते हैं अब अगला गीत, भोला भाला इस फिल्म से लता मंगेशकर ने और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत, सुनिए ये गीत।

हमारी एक श्रोता कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की इबारत का मुख्य रंग सावन, प्यार, ख्वाब, दिल और मिलन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस वक्त हम बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप में हैं। और ठीक है, आप ये हमें बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि बारिश में भीगना हमारे लिए कष्टकारी होता है, इसलिए हम तो वर्षा का आनंद घर के अंदर बैठकर ही लेते हैं, विशेषकर अपने टेरेस के झूले पर गर्मा गर्म चाय और पकोड़ों के साथ। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें तो कॉलेज का समय याद आता है, हम सब दोस्त कैंटीन में गर्म गर्म समोसे पैटीज खाया करते थे। ओह, एक और श्रोता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा यही सब सॉन्ग सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा उठता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद यही सब सॉन्ग मुझे दिल को सुकून दे रहे हैं। क्या बात कही है आपने। पुराने गीत इतने सुकून भरे होते हैं, सुनना जरूर चाहिए आज की जनरेशन को भी। देखिए, हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि बचपन में हमारे गांव से थोड़ी दूर हरा भरा वन था और वहां शिवजी का मंदिर था, वहां सावन की अमावस को मेला लगता था, वहां वड़ का बहुत ही विशाल वृक्ष था, वड़ की लंबी डाली लटकी हुई रहती थी, उसी डाली को लटक कर हम झूला झूलते थे और बहुत ही आनंद आता था। बिल्कुल आता रहा होगा। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की पहली बारिश में जवान होते थे तब भीगने का मजा और ही था, लेकिन अब इस उम्र में अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ याद ही काफी है। हमारे एक श्रोता और कहते हैं कि सावन की फुहार और

प्रेम का संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का सबसे कोमल समझौता है। बारिश धरती को सींचती है और प्रेम दिल को, दोनों ही बिना मांगे आते हैं और जब चले जाते हैं तो कुछ गीला कुछ यादगार छोड़ जाते हैं। इस सावन अगर बारिश हो तो भीगने से मत डरना, और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, है ना। लेकिन अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर उम्र ज्यादा है तो और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हमें देखभाल करनी ही होती है, थोड़ा बच के ही भीगना होगा, है ना। श्रोता ने ये कहा था कि और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, क्योंकि सावन का असली जादू यही है कि वह सब कुछ गीला कर देता है और गीले दिल सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। एक और श्रोता कहती है कि धड़कनों में बस गया है सांवरा, रूह में तन्हाई की राहें सजाया है, हर लम्हा उसकी यादों का पहला, दिल ने ख्वाबों में उसे अपना बनाया है, अब तो शाम सवेरे बस एक ही दुआ, प्यार के सफर में भी वो ही मिले। एक और श्रोता कहते हैं कि बाहर चल रही सावन की बरसात, साथ में विविध भारती का संग, हाथ में गरम कॉफी का कप, सामने प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े, क्या बात है। आप तो असल मजा ले रहे हैं इन गीतों को सुनते हुए सुरीले सफर का, क्या बात है। एक और श्रोता कहती है कि हमें तो सावन इसलिए अच्छा लगता है, एक तो चारों तरफ हरियाली और फूल बहुत ही प्यारे खिल जाते हैं, छोटे छोटे सब रंग के फूल और पक्षी भी इतने खुश नजर आते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का पावन महीना, विविध भारती, मुंबई की मेरी दीवानगी और आज सुरीला सफर प्रोग्राम, और मैं हूँ कश्मीर में, क्या बात है। वहीं से आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए बिल्कुल, और वहां पर है सुहाना मौसम, ऐसा भी वो बता रहे हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूँ, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूँ। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से, येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में, इंदु जैन का लिखा गीत, राजकमल का संगीत।

हमारे एक श्रोता ने कहा कि बहुत सालों बाद भोला भाला फिल्म का गाना सुना, क्या बात है, यह VBS पर ही संभव है। शुक्रिया। अब सुनिए ये गाना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि पूजा जी, हमारे भोपाल में तो केवल बादल छाए हुए हैं, पानी तो सावन के महीने में भी तरसा रहा है, अब तो केवल विविध भारती का ही सहारा है। एक श्रोता कहते हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का एक सदाबहार बेमिसाल गीत यहाँ बज गया है। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कार्यक्रम में अधिकतर गीत हमारी पसंद के आ जाते हैं। जी धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन आते ही मन मयूर नाचने लगता है, फूलों पर पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे शबनम की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे माहौल में काम करने में भी दिल नहीं लगता, दिल करता है बस ऐसे मौसम को देखते ही रहें। एक और श्रोता कहती हैं कि मौसम की पहली बारिश अपने साथ पुरानी स्मृतियों की एक पूरी किताब खोल देती है। वह चेहरा, वह बातें और उनके साथ बिताए हुए पल जो वक्त की धूल के नीचे छिप गए थे, अचानक धुले धुले से साफ नजर आने लगते हैं। बूंदों की छुअन उस स्पर्श की याद दिलाती है जो कभी रूह को छू गया था। यह याद कितनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ पाता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, सदियों से सावन को प्रेम, विरह और मिलन का महीना माना गया है। हम चाहे अपनी मसरूफियतों में कितने भी आगे निकल चुके हों, दिल के किसी कोने में आज भी वह मोहब्बत और उसकी कसक उतनी ही महफूज है। श्रोता कहती हैं कि सावन की ठंडी बौछारें जब जिस्म को छूती है तो रूह में सुलगती हुई किसी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बरसात का यह हसीन मौसम जहां एक तरफ प्यार की बेताबी बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ महबूब की दूरी सीने में एक मीठा मगर गहरा दर्द जगा देती है। एक और श्रोता कहते हैं कि बहुत सुंदर गीत स्वामी फिल्म से, क्या बात है, आपको अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया है। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे कहीं मोर नाच रहे हो, पंछी चहचहा रहे हो। ऐसे मौसम में दिल करता है कि कागज और कलम उठाएं और कोई कविता लिखें। ठंडी ठंडी हवाओं में कलम रुकती ही नहीं है, क्या बात। एक और श्रोता कहते हैं कि 50 बरस पहले की बात होगी, गांव में झूले पर झूलते सब मस्ती में कजरी गा रहे थे कि झूला टूटा और दूसरी ओर बैठे दो लोग कीचड़ में गिरे जो पहचान भी नहीं आ रहे थे, और इस ओर के तीन लोग नीचे इधर गिरे और चोटिल हो गए। सावन का मजा किरकिरा हो गया। लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं अगला गीत, समाधि फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, मजदूर सुल्तानपुरी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म अंजाना का यह रिमझिम के गीत सावन गीत में सावन की रिमझिम और दिल की तड़प एक साथ बोलती है। राजेंद्र कुमार की सादगी और बबीता की मासूम अदा इसे और भी खूबसूरत बना देती है। जी हाँ, प्यार जब बरसात में भीगता है तो हर बूंद एक गीत बनकर बन जाती है। वही बूंद रिमझिम के गीत सावन गायिका जादू बिखेर देती है। बिल्कुल सही। एक और श्रोता कहते हैं कि इस बरसात के मौसम में तो चाय और पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता है और आपके प्रोग्राम सुरीला सफर का स्वाद भी और बढ़ जाता है। दिल करता है कि गीत आते ही रहें और सावन की झड़ी लगी हुई रहे। एक और श्रोता कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में सावन पर बने गाने बहुत ही सुमधुर होते थे। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। सावन के गीतों में सबसे पसंदीदा गाना उनका आया आया सावन झूम के। एक श्रोता कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरा भाई स्कूल से लौट रहे थे और बहुत जोर की बरसात आ गई। वह पूरी सड़कों पे पानी पानी भर गया और हमें घर आने में बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बरसात के मौसम में ये दिक्कतें तो हमें देखना ही होती। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई लेकिन अब रुक गई है तो फिर से गर्मी बढ़ गई है। एक श्रोता कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूं अगर मैं कोमा में चला जाऊं और कुछ भी सुनाई ना पड़े तो मुझे लगता है यही वो गाना है माँ सरस्वती का होगा जो मुझे होश मिला सकता है। अरे अरे, ऐसे तो नहीं कहिए। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म जुर्माना का यह गीत सावन के झूले पड़े तुम चले आओ आनंद बख्शी द्वारा रचित, और जी हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया है, एक अमर गीत है जो राग पहाड़ी पर आधारित है और यह गीत सावन के मौसम में प्रेयसी के अकेलेपन और अपने प्रेमी के प्रति अघात प्रेम व पुकार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का सदाबहार बेहतरीन गीत शानदार है। बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनवाने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद संदेश के लिए। तुम चले आओ, तुम जो चले गए हो तो होगी बड़ी खराबी। यादों की महफिल कार्यक्रम में इस मजेदार गीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। विविध भारती को ये धन्यवाद दे रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं ये मौसम आया है इतने सालों में, आजा के खो जाएं ख्वाबो ख्यालों में। फिल्म का जय ओम प्रकाश जी के सुपरहिट गाने आज उन्होंने सुने यादों की महफिल में और उन्हें बड़ा आनंद आया। एक और श्रोता कहते हैं कि पिया का नाम आते ही सांसों में एक सरगम सी बजने लगती है। बेचैनी और सुकून का मिला जुला रूप इस पल को जादुई बनाता है। पल के बिछाए रास्ते को देखना और हर आहट पर यह सोचना कि प्रिय आ गया है इस रुत की सबसे हसीन सच्चाई है। जब सावन की यह रुत आती है तो प्रकृति भी श्रृंगार करती है। ठंडी हवाएं, खिले हुए फूल और फिजा का नशा प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लंबे इंतजार के बाद प्रेमी से मिलने की घड़ी जब पास आती है तो मन का कोना कोना खुशी से झूम उठता है। क्या बात है, इसी बात पे आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। आरोप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में माया गोविंद का लिखा गीत है। भूपेन हजारिका का संगीत बद किया।

एक श्रोता कहते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की जो बात समझी है इन्होंने कि चल रहे ऋतुचक्र के अनुरूप सावन की ही बातें हैं और इस दृष्टिकोण से आज की इबारत सराहनीय है ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि बहुत दिनों के एक नई उम्मीद है सावन के दिल की बात घर से दूर प्यार की मंजिल ये मोहब्बत की आवाज़ हर गीत मोती की माला सभी सॉन्ग कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं उनकी ऐसा वो बता रहे हैं।

हमारी श्रोता कह रही है कि आज की सुंदर सी इबारत, सावन की रूमानी फुहारों, झूलों की मस्ती, किसी अपने की याद, आंखों में बसे सपनों और प्रेम के अटूट विश्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। इसमें प्रकृति और प्रेम का ऐसा संगम है जो हर दिल को भीगा भीगा सा एहसास देते हैं, और उन्होंने ये गीत लिखा है। अब आपको सुनवा देते हैं।

श्रोताओं, समय की कमी रहते हुए कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, तो ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गीतों के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को। लेती हूँ आपसे विदा। जी नमस्कार।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 40वीं कड़ी।

बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु पूरे देश में सभाएं होने लगी। इस आंदोलन की अधिकतर सभाओं का आरंभ या समापन वंदे मातरम से होने लगा। पढ़े लिखे लोग जब भी आपस में मिलते तो नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते। वंदे मातरम इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसका दुष्प्रचार भी हुआ। वंदे मातरम की तुलना अन्य भाषाओं की कविता से करके उसमें कमियां दिखाने के प्रयास तत्कालीन कुछ लेखकों

0: और संपादकों ने किए।
1: ১৯০৭ में लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में हैदराबाद के दक्खन पोस्ट के संपादक सिद्धमोहन मित्र ने वंदे मातरम के बारे में ऐसा ही भ्रमित करने वाला लेख लिखा था। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत ला मार्सलेज का वंदे मातरम बंगाली संस्करण है और इसमें कुछ उत्तेजक शब्द जोड़कर लोगों को प्रेरित करने का कवि का प्रयास है, ऐसा उस लेख में लिखा गया था। इस लेख का भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंडन किया। पायोनियर के अंक में लिखा था, कविता की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से वंदे मातरम गीत अधिक अच्छा है। ला मार्सलेज में कवि का हृदय दिखाई नहीं देता, परंतु वंदे मातरम में कवि ने अपनी आत्मा समर्पित की है। फ्रांस और हिंदुस्तान के इन राष्ट्रीय गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। वंदे मातरम एक प्रार्थना है। इसमें स्वदेश के आधार पर आद्य शक्ति को मां कहकर संबोधित किया गया है। मातृभूमि को केवल मां कहकर कभी रुका नहीं है, बल्कि मां के समान ही प्रेम और श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाया है। जो गीत देशवासियों को अपनी जन्मभूमि से मां के समान प्रेम करना सिखाता है, उस गीत की तुलना ला मार्सलेज गीत से कैसे हो सकती है।
0: वंदे मातरम शब्द अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गए। वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बाद अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए शहादत स्वीकार करने लगे। लंदन में ही वीर सावरकर, सेनापति बापट, निरंजन पाल, मदनलाल ढींगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुरुतुल्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और मादाम कामा के साथ थे। अंग्रेजों की राजधानी लंदन में कर्जन वाइली नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां चलाने वाले मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई, पर उससे पहले उनका लिखा हुआ पत्र अंग्रेजों ने छुपा दिया था। सावरकर और ज्ञानचंद वर्मा ने भाग दौड़ करके फांसी से एक दिन पहले डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल ढींगरा का चैलेंज नामक पत्र छपवाया और लंदन में सामान्य जनता से लेकर पुलिस तक सभी को धक्का लगा। इस पत्र की भाषा अत्यंत ओजस्वी तो थी ही, पर इस पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था। इन शब्दों के कारण केवल दो दिनों में इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई बड़े समाचार पत्रों ने इस पत्र को प्रसिद्धि दी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों का दमन और वंदे मातरम शब्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। मदनलाल ढींगरा लिखते हैं,
1: आत्म बलिदान कैसे करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा इस समय हिंदुस्तान में देने योग्य है। यह शिक्षा देने का एक ही मार्ग है, स्वयं का बलिदान करना। इस भावना से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूं और मुझे अपने बलिदान पर गर्व है। इस भारत माता की संतान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो और इसी पवित्र कार्य में मेरा शरीर, मेरा जीवन मातृभूमि के लिए न्योछावर हो जाए, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। भारतीय स्वाधीनता का पक्ष विजयी हो, मानव जाति के कल्याण और ईश्वर के वैभव का समर्थन करने वाला स्वतंत्र भारतवर्ष संसार में आत्म तेज से चमकने लगे, तब तक मेरे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। वंदे मातरम।
0: १९१४ के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की हवाएं चलने लगी। उन दिनों कोमागाता मारू जहाज का किस्सा विशेष रूप से चर्चित रहा। इस जहाज के ध्वज पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल और अल्लाह अकबर शब्द अंकित थे। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में 360 भारतीय यात्रियों को लेकर कोमागाता मारू नामक जापानी जहाज 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। 23 मई को ये जहाज जापान होते हुए कनाडा पहुंचा। ब्रिटिश सरकार के इशारों पर नाचने वाली कनाडा सरकार ने इस जहाज को बंदरगाह पर लगाने की अनुमति नहीं दी। 15 दिनों तक समुद्र में खड़े इस जहाज पर अन्न जल समाप्त हो गया। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आगे वहां से निकला जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहां हुई मुठभेड़ में 18 यात्री शहीद हो गए। इस पूरे प्रकरण के मुख्य नेता बाबा गुरुदत्त सिंह को वंदे मातरम शब्द अत्यंत प्रिय थे, इसीलिए इस जहाज के ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द थे।
1: विदेशों में बसे भारतीयों में वंदे मातरम शब्द के प्रति अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया था। वंदे मातरम के प्रति उनका प्रेम कई प्रसंगों से व्यक्त होता था। इसी दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने आयरलैंड में वंदे मातरम मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। अफ्रीका में 22 अक्टूबर 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले केपटाउन और फिर जोहान्सबर्ग गए थे। हर जगह उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ।
0: दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उस समय इस षड्यंत्र के सूत्रधार लाला हरदयाल बर्कले में थे। ये समाचार सुनने पर लाला हरदयाल सहित भारतीय छात्रों ने एक सभा की जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। एक साल बाद इस घटना की वर्षगांठ पर 23 दिसंबर 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीयों के लिए एक पर्चा बांटा जिसका नाम था शाबाश। इस पर्चे में लिखा था, गुलामों स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे, हम कहते हैं बम की सहायता से। बम विद्रोह का संदेश वाहक है, शस्त्र की पूजा करो, शस्त्रों का अभिवादन करो। उस पर्चे के पहले भाग में बम बनाने की प्रक्रिया, दूसरे में उसकी उपयोगिता और तीसरे में बम की प्रार्थना दी गई थी। पत्रक का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।
1: केवल कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में ही नहीं बल्कि जहां भारतीय नागरिक मुस्लिम देशों में थे वहां भी वंदे मातरम पहुंच गया। विश्व यात्री रामनाथ विश्वास ने उस समय घटी घटनाओं को लिखा है। तुर्किस्तान में अदम नामक स्थान की मस्जिद पर तुर्की भाषा में वंदे मातरम शब्द लिखे थे, साथ ही हिंदुस्तान का झंडा भी था। शुक्रवार को सफाई के बाद नमाज के समय वंदे मातरम का उच्चारण होता था। वियना में अमेरिकन एसोसिएशन में रामनाथ के भाषण के बाद हिंदी लोगों ने वंदे मातरम का जय जयकार किया। बगदाद, तेहरान, इराक में हिंदी लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम उन्होंने अनुभव किया। भारत के बाहर वंदे मातरम पहुंच तो गया ही था, परंतु भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जनमानस में भड़की आग अभी भी जल ही रही थी।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष।

वंदे मातरम एक जय घोष। आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 40वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार

0: रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम।

0: द्विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश। वंदे सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
7: सुनिए।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: 2:15 का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता

0: जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: वेलकम तो ये के साथ जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृतिपोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहल की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।

0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया। आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
4: इसमें कितना बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
5: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच आईएमडी ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्रिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजू फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है। इस गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, भीगी रात फिल्म का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, रोशन का संगीत।

अपना देश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आनंद बख्शी की रचना है आजी परमन की बनाई धुन पर।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है,
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत दो बदन फिल्म से, आशा भोसले की आवाज है, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
3: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, SH बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

0: आते ही रहे।
1: 2:55 हुए हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। विधानसभा में आज भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 8,399,31,11,000 रुपए मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ।
2: इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा और एनडीए विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। इस अनुपूरक बजट पर आगामी 10 अगस्त को सदन में विस्तृत चर्चा और मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी
4: कि झारखंड में भी लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, हजारों बच्चे अनशन में बैठे हैं, धरने बैठे हैं। अब उन्होंने एक रस्म पूरा कर दिया कि भाई वीडियो संदेश दे दो। अरे आप में इतनी नैतिकता थी, आपकी बैसाखी पर तो सरकार चल रही है। छात्रों क्या डिमांड है भाई कि सीबीआई जांच करा दो, पैसे का इन्वॉल्वमेंट ईडी जांच करा दो, 16 लोग उत्पात सिपाही के दौड़ में मारे गए उनको 1-1 करोड़ रुपए दिलवा दो, यही तो मांग है। और जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल कर दो, यही तो मांग है।
2: डुमरी विधायक जयराम महतो ने जेपीएससी परीक्षा मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग करते हुए सरकार द्वारा अब तक छात्रों से वार्ता न किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्तियों में लाखों रुपए के लेनदेन का यह खेल अरबों रुपए का घोटाला हो सकता है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय से होनी जरूरी है।
5: सही से जांच हो तो प्रमाणित हो जाएगा। लाखों रुपए में सीटों को बेचा गया है, जो नियुक्तियां दी भी गई हैं उनको भी लाखों रुपए में बेचा गया है। सबसे बड़े नेताओं में से है राहुल गांधी, और अगर उनके स्टेटमेंट के बाद भी सरकार वार्ता नहीं कर पा रही तो उसको हम क्या कह सकते हैं। इनको कह सकते हैं कि अपने अभिमान में और अभिमान से कुछ नहीं होता, इन्हें विनम्रता दिखानी चाहिए, छात्रों से संवाद करनी चाहिए, 1-1.5 घंटे में समाधान हो जाएगा। सरकार को भी मालूम है मुद्दे क्या है।
2: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की पहल पर जेएसएलपीएस में नई एचआर पॉलिसी लागू की गई है, जिससे करीब 1,300 नए पदों का सृजन होगा। इस नीति के तहत विभिन्न स्तर के कर्मियों के वेतन में 60% तक की भारी वृद्धि की गई है और पहली बार उन्हें ग्रेच्युटी तथा स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ मिलेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर के माइकल जॉन प्रेक्षागृह में 13वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। वीवर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नागरिकों से अधिक हस्तकरघा उत्पादों को अपनाने की अपील की।
6: राज्य की सांस्कृतिक पहचान की समृद्ध बनाता है। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक तकनीक, डिजाइन, विपणन और डिजिटल माध्यमों से जोड़कर जो उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराई जाए। सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक कार्य करने के दौरान बुनकर समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं को निकट से समझने का, हितों के लिए कार्य करने का मुझको अवसर मिला।
2: इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों को सम्मानित भी किया गया। रांची में आज भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एलिम्को के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यह नया कार्यालय झारखंड सहित पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के 13 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए अगले 3 घंटों के भीतर राज्य के 8 जिलों बोकारो, धनबाद, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़ और साहिबगंज में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सभी सखियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इटलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है, अपने साथ लाता है उमंग उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार। हरियाली तीज, कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना, कजरी गीतों के मीठी तान। सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले। संग होती हैं सखियां सहेलियां, यादों वादों और मायके जाने का मौसम जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है। बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम। आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी? हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं बियामा मुन्ना बात कर रही हूं मैडम
0: जी।
1: पहलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी,
1: गांव कुंदरगी से
0: जी।
1: और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूं मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं। वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर?
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ, आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
0: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
1: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिरकल बोल के गाँव है
0: जी,
1: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मरतबा या दो मरतबा
0: जी। दिया जी, देखिए ना सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूम कर इठलाता बलखाता, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
1: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है।
0: और सावन में झूला झूलना ये कैसा लगता है आपको?
1: बहुत मजा आता है मैडम, हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार।
0: हाँ जी,
1: तो हम अपने सखियों के साथ झूला झूलते थे।
0: अच्छा,
1: और बहुत मजा आता था
0: जी। अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं वहाँ पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
1: वहाँ मैडम मैं और मेरी कानों की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
0: अच्छा अच्छा, दिया जी आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम ही देखिए मेरी आँखें।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है?
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ।
0: कहाँ से?
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका। बिल्कुल, आपकी आवाज भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में जी।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
1: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी अब तो त्योहार व्रत जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, कभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी, एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है मंजिल
0: जी,
1: उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे जी, यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
0: बिल्कुल, आप गा के सुनाइए।
1: लगी कैसी ये अगन, ला ला ला ला ला ला ला ला। लगी स्मिटन जी,
0: बहुत प्यारा सा आपने गीत गाया। तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ। मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ
0: अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी।
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती।
0: अच्छा।
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को।
0: जी जी जी
1: वो चलाती।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरा बेटा, मैं, 3 जन है। हम बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती।
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: चंदा मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे, हमारे मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। और जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा, तो ये बताइए, और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रही हैं और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए आपको

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुड़े।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं? तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी अच्छा, ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी? वाह क्या बात है, यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां, है ना, बालों में गजरा।
1: हाँ,
0: किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
1: मोगरा।
0: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाईजी।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी?
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम आपके है कौन में से हम आपके है कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।
2: हम

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ, भोपाल से। सहेली
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए हाँ। कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना
0: जी,
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही चेंज बता ही नहीं सकते।
0: आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हो तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती हैं,
1: है ना? दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनते थे, क्योंकि हरी हरी टाइम रहती है ना
0: जी,
1: तो हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित तटानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है, आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी
0: जी।
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना।
0: क्या बात
1: तो,
0: है, मतलब 1970s की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना, वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था, 26 जनवरी का परेड
0: जी,
1: तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में कि सावन का जो मौसम चल रहा है तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना उनको देखा है आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से
0: जी,
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है और वो अनर्सी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है। आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है और वो झूले, पेंगे, मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू और मेरे बाबा का चीजें लाना, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में से है
0: जी,
1: तो बहुत मजा आता था। इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है। छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या
1: अलग ही मजा है वो।
0: और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, उसको फूलों से सजा कर और एक एक करके पेंग लगाते थे इस तरीके से। और भीड़ बाहर होती थी, मम्मी, मेरी माँ लोग, चाची लोग, उन लोग सब हरी हरी चूड़ियां
0: जी
1: और साड़ी तैयार और सब सावन का सेज, हरा लाल, मतलब एक अलग ही छवि उभर के आती है।
0: क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी। जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना।
1: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली
0: जी,
1: सारी बदमाश लड़की लड़कियां सब भाई बहन मिलके मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि तब तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज ये। और सावन में जो ब्रेक होता था, हम लोग की छुट्टियां भी होती थी तो बहुत मजा। और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
0: जी,
1: होगा।
0: बिल्कुल, हमने मतलब भी इंजॉय किया है रेनी डे का।
1: बिल्कुल, तो बहुत, मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।
0: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताजा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हरियाली तीज, कदरी तीज और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो भाई बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्योहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं, अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी, अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या खरीदेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया। तो हम लोग टोटल 13 भाई बहने हैं।
0: क्या बात है,
1: और आप सोच नहीं सकते। और मेरी एक लौती बुआ होती थी, वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब, और हम लोग सब साड़ी पहनते थे और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था, राखियां हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम के धागों से,
0: हाँ जी,
1: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहनें बनाते थे राखियां। और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो उसको प्राइज मिलता था।
0: क्या बात है।
1: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों हम लोग सारे जो चिल्लर पार्टी होते थे।
0: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा कर दी कि मेरी भी यादें ताजा हो गई है। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में, जब बड़ा परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है।
1: बहुत बहुत मजा आता था क्योंकि हमारे बाबा लोग सात भाई और एक बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल होता होगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते जा रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में ससुराल में सास ससुर है
0: जी,
1: और देवर देवरानी लोग अभी दिल्ली में, मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं। तो बस हम लोग चार पांच जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ कर चुका है, अभी अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है।
0: क्या बात है,
1: बस छोटा सा प्यारा सा परिवार है।
0: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं सावन के महीने में सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता।
0: नहीं बिल्कुल, आप याद कीजिए।
1: तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है
0: जी।
1: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए ये वाला गाना आप चला दीजिए।
0: सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा?
1: अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर, उससे करते करते सावन आ गया, अब तो पलसा मिल ही गया।
0: मिल गई ना, तो देखिए सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना?
1: आपको भी जी जी
0: तो अर्चना
1: आपको
0: जी
1: भी बहुत बहुत बधाई हो सावन की।
0: अर्चना
1: जिंदगी हरी भरी रहे आपकी।
0: जी, अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां रंग बिखेरे तरह तरह के, और बहुत सुखमय जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ।
0: अच्छा,
1: जो बहुत अच्छा चलता है।
0: बहुत
1: अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय

0: तो चलता ही है
1: जी.
0: बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है.
1: अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं, सूजी की या मावे की?
0: नहीं नहीं मावे की,
1: उसमें कुछ भी मिलाती नहीं है, सूजी भी नहीं मिलाती है ना?
0: नहीं कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर मावा और ड्राई फ्रूट्स रहता है.
1: क्या बात है. जो आप नमकीन बनाती हैं, उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
0: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है
1: जी.
0: तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है.
1: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
0: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम. मेरी मम्मी बचपन से ही काम करवाती थी तो वो आदत पड़ गया था, और खाना खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो फिर हमारी हॉबी बन गई.
1: क्या बात है. यानी देखिए,
0: बड़े हो गए हैं उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है, और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है.
1: देखिए, माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में सिखाते हैं वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि शादी होगी दूसरे घर जाएंगी तो वहां पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो. तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है.
0: काम आ रहा है ये चीज.
1: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
0: नहीं, बच्चे तो भी पढ़ रहे हैं, पर हाँ अभी जैसे गुजिए का टाइम है तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना तो नहीं हो पाता. एक एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है.
1: बिल्कुल सही बात है.
0: दो लेडीज भी हैं, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं.
1: क्या बात है. यानी सावन में आपने गुजियों की याद दिला दी, महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके. अर्चना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है. और
0: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की आवाज इतनी मीठी लगती है ना
1: जी,
0: कि मैं क्या बोलूँ, पूछिए मत.
1: धन्यवाद. अच्छा ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
0: ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब मैं मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी. 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला, तो वो यादगार रहा है मेरे लिए.
1: जी, आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें होती हैं, है ना?
0: वो यादें होती हैं, पर अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को देखना है तो हो नहीं पाता है.
1: जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये चीज. तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
0: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है. उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है. उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस.
1: और वहाँ पर
0: और कुछ नहीं रहता था, तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ, कहीं भी लगाओ तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है. वो जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं, पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ.
1: अच्छा, मेले में जो दुकानें लगती है, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मिलती जो घरों में उपयोग की जाती, बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियां सब होती हैं. तो आप उनमें से क्या क्या चीजें ज्यादा खरीदा करती थी उस समय?
0: मैं किचन का सामान ज्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता.
1: क्या बात है, हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है, तो
0: जी क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है पकड़ कर. वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले आते थे, अब ये छोटे छोटे मिलने लगे, तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना तो तुरंत खरीदते थे. और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती
1: हूँ. क्या बात है, यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती है गुजिया बनाने के लिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है.
1: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई. तो चलिए बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम, सजन तुमसे मिले हम बरसात में.
1: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत.

0: हेलो सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं?
1: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है, मुझे
0: जी
1: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है।
0: क्या बात है। और पूनम जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी बिल्कुल, बहुत पसंद है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं,
0: जी
1: मेरे हस्बैंड और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ।
0: जी, क्या बात है। पूनम जी, ये बताइए, जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
1: सावन का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है।
0: जी
1: चारों तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
0: जी
1: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा प्रेयर जाती थी, वहाँ पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
0: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
1: सावन का महत्व मतलब झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
0: जी।
1: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
0: और वहाँ की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
1: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर और गुलाब जामुन, पूरे खीर बनती है और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस।
0: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है, वो तो कई तरह की बनती है ना?
1: हाँ, मसाले वाली बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है
0: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहाँ पर?
1: हाँ बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है।
0: जी पूनम जी, आपने कभी वहाँ पर जो मेले लगते हैं, वहाँ पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है
0: जी,
1: और भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में।
0: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये गीत सुना दीजिए, अब के सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
0: पूनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत,
2: आपके

सखियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4 0

0: 00024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 40024662, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
1: स्वाति की सुबह हमेशा मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। विधानसभा में आज भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्षी भाजपा और एनडीए विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल और परसों यानी 8 और 9 अगस्त को मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर समिति के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की पहल पर JSLPS में नई HR पॉलिसी लागू की गई है, जिससे करीब 1,300 नए पदों का सृजन होगा। इस नीति के तहत विभिन्न स्तर के कर्मियों के वेतन में 60% तक की भारी वृद्धि भी की गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जा रहे थे, मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ। उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूँ। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही। तो तुम्हें याद हूँ मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे, ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूँ। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका

दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हां किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब ये जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में, न ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया। आदत है सब अपने अंदर रखने की।

स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे यह एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेल जोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

0: लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया।
1: क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना,
0: स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा।
1: अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं।
0: स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो, ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
2: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCRT एपिसोड 1345।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावलीनोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी तो आपको बता दें कि मावलीनोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावलीनोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहां चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे।

0: आप कूड़ा यहां वहां जहां जी चाहे वहां नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800044055 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: हाँ, 2000 साल पहले।
3: नानी माँ?
5: हाँ निधि।
3: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यहीं हूँ। आ जाओ निधि, आओ आधिका बेटी।
3: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
3: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
5: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप, ये कपड़े हमने कब पहने थे?
3: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
5: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
3: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
5: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
3: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
5: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो

0: हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
1: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए। आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
2: नाना जी, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं?
1: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
3: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
2: अच्छा,
3: पुरानी या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
1: मामा जी।
4: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
2: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
4: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष।
4: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
4: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
4: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
4: हाँ बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
4: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
4: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
4: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
4: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
4: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
4: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
4: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
4: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
5: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion Passepartout.

0: आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एपिसोड 1345। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: आज बजे हैं प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन छात्रों के आंदोलन और जेपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सदन में छाया रहा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षाएं रद्द कर पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और उनकी सरकार युवाओं के प्रति पूरी तरह गंभीर है। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल और परसों यानी 8 और 9 अगस्त को मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज गुमला जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिसई और घाघरा के कॉलेजों में निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थियों का ऑनलाइन फॉर्म 6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कराई गई। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने के लिए आज शाम रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे लगाने, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना लोफर फिल्म का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है 15 अगस्त।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म 1942 लव स्टोरी का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले इन सभी ग्रामीण श्रोता भाई बहन के अलका के दने से जोहार प्रणाम और अपन एक कार्यक्रम में स्वागत हम। आज है 7 अगस्त जेकरा में हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाबो है। ये दिन हम देश के जो बुनकर हथिन उनका हस्तशिल्प से जे जुड़ल जे कारीगर हथिन उनकरा मेहनत कौशल और योगदान के सम्मान देवो के बात हो है। और जे ग्रामीण भारत के जे अर्थव्यवस्था है ने ओकर दो गो मजबूत स्तंभ है, एगो खेती और दूसर हथकरघा। खेती हमें के अनाज फल और सब्जी सब देवो है, वहीं हथकरघा जे है वो बहुत परिवार के रोजगार और आत्मनिर्भर भी बनावो है। जहाँ किसान खेत में मेहनत करके देश के पेट भरो हथिन, वहाँ जे बुनकर हथिन सुंदर सुंदर कपड़ा तैयार करके जे सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षित रखो हथिन। और इस सब दोनों के कारण ही गांव में रोजगार बढ़ो है और जे पलायन है वो कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात जे स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बनो है। आज जे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ओकर में हमने संकल्प लिए कि जे स्थानीय बुनकर जे उत्पाद तैयार करो हथिन ओकरा हमने अपनाइए और किसान के साथे साथे बुनकर सबके भी सम्मान और समृद्धि में हमने योगदान दिए और वोकल फॉर लोकल के भावना के अपनाकर हम ग्रामीण भारत के और मजबूत बनिए। और अब हम रुकिए एगो जरूरी संदेश और लोकगीत के वास्ते।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: तो अभी हम सुनिए एगो लोकगीत और कुछ जरूरी संदेश। आजकल खेती बाड़ी के काम में बड़ी कृषि यंत्र जो हो जाए है ओकर बड़ी जरूरी पड़ जाए है। जैसे देख लो कि समय कम रहो है या फिर हमने के काम करे वाला आदमी के कमी हो जाए है, तो ऐसे में कृषि यंत्र के बहुत जरूरी पड़ जाए है। और कृषि यंत्र लेने में बहुत ज्यादा पैसा भी लग जाए है, बहुत की स्थिति रहो है बहुत की स्थिति ना रहो है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी वास्ते बहुत योजना चलत है जेकर बारे में हमें के जानना जरूरी है कि अगर हमें जाने थे तो कैसे लाभ ले सको है। ऐसी एक योजना है कि कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन, ये जो योजना है एकर में केंद्र सरकार जो है से प्रमुख केंद्र सरकार के प्रमुख योजना है जेकर में कहला कि ट्रैक्टर हो गलो, पावर टिलर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर हो गलो, रिपर हो गलो, थ्रेसर हो गलो, प्लांटर हो गलो, स्प्रेयर हो गलो, मल्चर स्प्रेयर जो कहल जा है, और भी बहुत सारा जे आधुनिक कृषि यंत्र है ओकरा जे पात्र किसान हथी जे ले सको हथी उनका सब्सिडी देवल जा सको है। और एकर में जैसे जे छोटा किसान हथी, सीमांत किसान हथी या फिर महिला किसान हथी उनका प्राथमिकता देवल जेते। तो हमने के जानकारी लेना चाहिए कि कौन कौन सा मतलब योजना चले थे जेकर से हम एक लाभ ले सको ये। और एक साथ में वो है कि फार्म मशीनरी बैंक जेकर में फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि यंत्र के बढ़ावा दे वास्ते कृषि यंत्र के उपयोग भी कर सको हथिन। और एक साथ में आज हमने के को जानकारी लेकर ले है कि हमने जो खेती बाड़ी कृषि कार्य करे है खेती बाड़ी करे है ओकर में देखा जाए है कि जब हम एक फसल लगावो ही है तो फसल लगावे तो कभी उत्पादन बेस से ना हुए है कि लगतो कि फसल के बढ़वा ठीक है, कभी कीट के प्रकोप हो जाए तो या कभी कीड़ा लग जाए तो ओकर में हमें देखो कि फसल के उत्पादन ठीक से ना हुआ है। तो आज ऐसे ही हमने एक जानकारी लेकर ले है कि फसलों में कीट प्रबंधन या फसल के हमने कैसे प्रबंधन करिए ताकि हम एक सही तरीका से लाभ ले सको ये। और जानकारी देवे थे शंभु प्रसाद सिंह और ये थे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक चौपारण के, और इनका से बातचीत कर लिए थे अलका कुमारी। तो सुन जाए जानकारी भरल बातचीत।
1: नमस्कार ग्रामीण भाई बहन, आप सभी को हम समय समय पर ऐसी जानकारियां आपके उपयोग के लायक दिया करते हैं जो आपके कृषि कार्य में काफी लाभदायक होता है, या तो हो योजना के बारे में हो या कृषि कार्य के बारे में हो या खाद के बारे में हो। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक चौपारण के, उनसे बातें करेंगे, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम शंभु प्रसाद सिंह हुआ और मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक चौपारण में पोस्टेड हूँ।
1: तो अभी जो हम लोग फसल लगाते हैं, बातें करते हैं कृषि कार्य के बारे में ही कि कहीं धान लगा हुआ है, कहीं लगाने की तैयारी हो रही है या बहुत सारे फसल और भी लगे हुए, तो जरूरत हो जाती है कि फसलों में कहीं कहीं देखा जाता है कि कीट का मतलब प्रकोप हो जाता है या किसी तरीका का कीड़ा का आ जाता है, तो हम लोग ऐसे क्या मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जाए कि हमारा जो फसल है वो सुरक्षित रहे, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
2: सबसे पहले तो हम लोग उस बात पर ध्यान दें कि ऐसा प्रबंधन करें कि कीट आए ही नहीं।
1: बिल्कुल, इसके लिए क्या करना पड़ता
2: है? तो कीट नहीं आए इसके लिए हम लोग अगर पहले से मैनेज करके रखें फसल को कैसे लगाना है, कौन सी पोषक तत्व या कहें तो फर्टिलाइजर या खाद डालें, कौन सा ज्यादा ना डालें, कौन कम डालें, इस पर अगर ज्यादा ध्यान दें तो कीट आएंगे ही बहुत कम। अगर कम आएंगे तो रासायनिक कीटनाशक है या फिर कोई भी कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
1: अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि हमें फसल को कीट नियंत्रण मतलब रखना है तो क्या वो जमीन तैयार करते वक्त ही हम लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए?
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो हम लोग ये सोचे कि पिछले साल जो कीट आया है वो कीट इस साल नहीं आया, इसके लिए हम लोग खेत को जोतते समय ही ध्यान देते हैं। एक तो गहरी जुताई करते हैं और समर

0: के टाइम में जुताई करके छोड़ देते हैं तो उसके जितने भी लार्वा या तक कहें तो उसके रेसिड्यू क्रॉप रेसिड्यू वगैरह को खत्म कर देना चाहिए। और डीप प्लाव करने से या गहरी जुताई करने से उसके जो कीड़े होते हैं वो खेत में ही मर जाते हैं, जो अगले फसल में आने वाले फसल होता है उसको नुकसान कम पहुंचाता है।
1: अच्छा, मतलब कि हमें ध्यान देना चाहिए कि जब गर्मी के समय में जुताई कर रहे हैं तो ही पहला कदम हमें उठा लेना चाहिए, फिर दूसरे कदम पर क्या होना चाहिए?
0: दूसरे पे ध्यान देना चाहिए कि वैसा फसल बिल्कुल ना लगाए जो फसल पिछले बार लगाए हैं और उसमें कीट का प्रकोप ज्यादा रहा है,
1: यानी फसल बदल देना
0: चाहिए, क्रॉप रोटेशन इसको बोलते हैं। हाँ, उस बात पर भी अगर ध्यान देते हैं तो आने वाले कीट में काफी कम हो सकती है उसकी संख्या।
1: इस बात को ध्यान रखने के, अगर हमारे पास जो पिछला जो फसल लगाए हैं अब वो फसल में हमारे कीट का प्रकोप हो गया है या फिर हल्का फुल्का भी है तो अगर हम फसल बदल देंगे तो इससे हमारी बचाव हो सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी कीट होते हैं वो क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो कीट उसी क्रॉप को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, कोई खास क्रॉप। अगर हम दूसरे क्रॉप उसकी जगह पे लगा देते हैं तो वो पार्टिकुलर कीट दूसरे क्रॉप को टच नहीं करता, उसको छूता भी नहीं।
1: बिल्कुल, अगर झारखंड क्षेत्र में लगा बताया जाए तो कि झारखंड क्षेत्र की जो जमीनें होती है या फसल होता है उसमें किन बातों
0: झारखंड झारखंड में देखा गया है कि हमारे यहाँ क्रॉप न्यूट्रिएंट में अगर देखें तो थोड़ा सा कमी है। तो वो यहाँ एक तो नाइट्रोजन की कमी है, पर उसकी अधिकता कहीं ना कहीं कीट को भी बढ़ावा देता है। तो जब हम लोग फसल में पोषक तत्व या तो कहीं खाद डालना है, उर्वरक डालना है, तो ऐसे उर्वरक का प्रयोग करें जो कीट की संख्या को बढ़ाए नहीं बल्कि उसको कम करे। तो नाइट्रोजन की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं, इसके स्थान पे झारखंड के कृषक पोटाश कम डालते हैं। जितनी भी जमीन है लगभग सभी जमीन में पोटाश की कमी है, और पोटाश एक ऐसा खाद है जो कि क्रॉप का इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और हमारे झारखंड में लगभग जब सभी जमीन में पोटास की कमी है तो ऐसे हालत में हम लोग को पोटास को ऊपर से कुछ ज्यादा ही डालना चाहिए
1: ताकि कि हमारा जमीन में उर्वरा शक्ति बना रहे और स्वस्थ रहे।
0: हाँ, ये पौधों में एक तरह से कहें कि मैच्योरिटी लाता है या फिर एक तरह से मजबूती लाता है जो कीड़ों से लड़ने की ताकत पौधे में बढ़ाता है।
1: ये कब डाला जाता है?
0: ये तो खेत तैयार करते समय ही हम लोग इसका ज्यादा
1: तैयार करते।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, तो लोग कहते हैं कि मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है, आजकल सरकार के द्वारा भी कहा जाता है कि मिट्टी जांच अपने फसल के लिए जरूरी होता है, तो उसी में ये पता चल जाता है कि हमारी जमीन में किन पोषक तत्वों की कमी है।
0: जी जी, सरकार के द्वारा मिट्टी जांच के लिए कई नमूने लिए जाते हैं, और नमूना लेकर के हम लोग जांच करवा के लाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया पे जांच किया जाता है, जिसमें से मुख्य क्राइटेरिया है ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें हमारा झारखंड का सॉइल थोड़ा पुअर है। दूसरा है नाइट्रोजन, एवरेज है हमारा झारखंड। उस तीसरा है फास्फोरस, जो कि वो भी लगभग ठीक ठाक है। चौथा पोटाश है, उसकी यहाँ डिफिशियंसी पाई जाती है हमारे झारखंड में, कमी है उसके बाद
1: उसकी कमी है।
0: हाँ, इसके अलावे कभी कभी उसमें सल्फर आयरन ये सब भी दिखाया जाता है।
1: इससे भी कीट का प्रकोप हो सकता है
0: कि जैसे जैसे हम लोग नाइट्रोजन का खाद बढ़ाते हैं कीट की मतलब अटैक ज्यादा करता है। मतलब जिस खेत में हम ज्यादा नाइट्रोजन देंगे, नाइट्रोजन मतलब यूरिया हम ज्यादा डालेंगे तो वहाँ कीट का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा।
1: अच्छा, लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा यूरिया डालेंगे तो हमारा फसल ज्यादा अच्छा।
0: पौधे तो बढ़ते हैं पर उसमें कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है,
1: यानी फसल आपका अच्छा दिखेगा लेकिन जो फल है उसमें रोग लगता है।
0: नहीं नहीं, वैसा नहीं, जैसे कहें कि फसल बढ़ भी रहा और उसमें इतने सारे अटैक हो जाएंगे कि फिर बाद में ग्रोथ कम होने लगेगा। मतलब इनिशियल फेज में बढ़ेगा, उसके बाद फिर वो हाँ लॉस ग्रोथ रुकेगा, उसके बाद कीट है जो यार पत्ते खाने वाला कीट पत्ते खा जाएंगे, रस चूसक कीट है जो उसके सारे रस चूस लेंगे और पौधे कमजोर होकर के फिर वो कमजोर हो जाएंगे और फल जितना लगना चाहिए वो फल नहीं लग पाएगा। कभी कभी नाइट्रोजन की अधिकता से पौधे गिरने भी लग जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वो गिर भी जाते हैं। धान के केस में ऐसा देखा गया है कि वहाँ गिरते हैं।
1: तो इसमें क्या करें ग्रामीण भाई, जो कि कृषक भाई हैं, उनको क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो नाइट्रोजन जैसा खाद है कि उसको उचित मात्रा में मतलब अधिक बिल्कुल ना डालें। मिट्टी जांच करने के बाद वो लोग इसकी मात्रा पता लगा सकते हैं। जब हम लोग मिट्टी जांच कराते हैं तो उसके रिपोर्ट में सॉइल हेल्थ कार्ड में ये भी लिखा रहता है कि कितनी मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है और कितनी मात्रा में अतिरिक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं।
1: ये भी लिखा रहता है उसमें, उसकी जानकारी वो लेकर अपने खेत में कर सकते हैं।
0: पोटाश की कमी की वजह से पौधे थोड़े कमजोर हो जाते हैं, गिरने का भी प्रॉब्लम पोटाश की कमी की वजह से होते हैं,
1: जो कहीं कहीं गिर जाता है पौधा,
0: वो पोटाश की कमी को दर्शाता है। प्रॉपर ग्रोथ भी कभी कभी नहीं देखने को मिलता। उसके बाद फल में नहीं, फसल में जितने फल लगने चाहिए, आई मीन जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, वो भी काफी गिरता है। कीटों की संख्या भी, पोटास जहां कम होता है वहां पर कीट ज्यादा अटैक करते हैं, ज्यादा प्रभावित करते हैं फसल को। तो पोटास एक ऐसा खाद है जिसका प्रयोग हम अगर सही मात्रा में करें तो वो कीटों से भी हमारा रक्षा करेगा पौधे को। और ड्रॉट कंडीशन मतलब अगर पानी की कमी भी होती है तो पोटास है जो के रहते उस कमी को वो कम प्रभावित करता है पौधे को।
1: तो अभी तो आपने जैसे धान के लिए बताया कि ये सारी समस्या हो सकती है हमें कीट नियंत्रण में, लेकिन अभी तो बहुत सारे और भी फसल लगे होंगे, मक्का है, सब्जियां हैं, तो उनमें भी क्या ये समस्या देखने को मिलती है?
0: बिल्कुल, पोटास की कमी ज्यादातर फसलों में देखने को मिलता है और सब्जियों में तो कीट का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है। ऐसे स्थिति में माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ पोटास का अतिरिक्त डोज पौधे को अंदर से मजबूत बना सकता है, फलों की संख्या, फूलों की संख्या को भी बढ़ा सकता है।
1: इसके लिए वो क्या करेंगे जो कृषक भाई हैं, इनके लिए मतलब अपने फसल को मजबूत बनाने के लिए या पोटास की कमी को दूर करने के लिए वो क्या किस तरीका से प्रयोग कर सकते हैं?
0: जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि झारखंड का सभी मिट्टी में पोटास की कमी है, तो ऐसे हालत में जो भी फसल लगाते हैं तो उसमें पोटास की एक उचित मात्रा, जो कि धान के लिए 1 किलोग्राम प्रति कट्ठा के दर से है, लगभग सभी फसलों के लिए यही मात्रा होता है, थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 kg प्रति कट्ठा के दर से हम अगर इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो कीट के साथ साथ पौधे अंदर से मजबूत बनेंगे और फसल का कहीं ना कहीं उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि पौधों फसलों में हम कीट नियंत्रण कैसे करें, अपने फसलों को मजबूत कैसे करें और हमारी जमीन में किस पोषक तत्वों की कितनी जरूरत है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो देखा भी हमने एक जानकारी सुने थलिए कि फसलों में कीट प्रबंधन कैसे करल जाए, हम अपन माटी के कैसे मतलब उर्वरा शक्ति बढ़ा सकल है, मजबूत कर सको हिये। और बतवे थलथिन शंभू प्रसाद सिंह और जे हलथिन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक चौपारण के, और इनका से बातचीत कर ले हलथिन अलका कुमारी। तो अब हमने देखा ये आज के बाजार भाव कैसे चलित है। तो आज की जो बाजार भाव है, लाल आलू है से 25 से 30 रुपए प्रति किलो है, सफेद आलू है 20 से 25 रुपए प्रति किलो, प्याज के भाव चलित है 30 से 35 रुपए प्रति किलो, फूल गोभी जो है से 30 से 40 रुपए किलो मिले लगल है, और पत्ता गोभी 30 से 35 रुपए किलो, पटल 30 से 40 रुपए किलो, और भिंडी के भाव है 25 से 30 रुपए किलो, नेनुआ 20 से 25 रुपए प्रति किलो मिले थे, और कद्दू 20 से 25 रुपए किलो, हरी मिर्च जो है 80 से 90 रुपया है प्रति किलो, और शिमला मिर्च है 50 से 60 रुपए प्रति किलो, गाजर 35 से 40 रुपए प्रति किलो, और बीन्स के दाम है 50 से 60 रुपए प्रति किलो, और मूली जो है से 25 से 30 रुपए किलो मिले थे बाजार में, और धनिया पत्ती के भाव है 100 से 120 रुपए प्रति किलो, अदरक 120 से 150 रुपए प्रति किलो, खीरा 20 से 25 रुपए किलो मिले थे, और टमाटर 30 से 40 रुपए किलो, लाल साग और पालक साग दोनों 25 से 30 रुपए किलो मिले थे। और जे आज के मौसम है, अधिकतम जे तापमान है 28 से 29 डिग्री सेल्सियस है, और जे न्यूनतम तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस है, और आर्द्रता है 85 से 95%। और मौसम है कि बादल मतलब छैले रहते हैं, हल्का और मध्यम जे बीच के बारिश रहे हैं, और कहीं कहीं गरज भी होते हैं और बारिश भी होते हैं। और कल के जो मौसम है वो भी है, कल अधिकतम तापमान के है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस है, और आर्द्रता है 80 से 90%। और कल के भी जो मौसम है, बादल मतलब छायल रहते हैं और रुक रुक के बारिश होते हैं। तो इस तरीका के, और जो किसान भाई बहन थे तो अगर जैसे बारिश में पानी अगर ज्यादा जमा हो जाए थे तो जल निकासी के व्यवस्था रखती, और बारिश के समय रासायनिक जो दवाई के छिड़काव है ओकरा करे से बचती, और बारिश पानी रुके के बादे छिड़काव करती। तो अब भी हमने रुको है और सुना है एगो लोक गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: के कर बीनू रसिक

तो अभी हमने सुन लिया जरूरी संदेश और एगो लोकगीत। अभी है बरसाती खरीफ फसल और ओकर में हमने के कुछ कुछ बात के ध्यान रखना है कि जे लगे लही है फसल में कैसे फसल अच्छा हो, जे पौधा हो वो सुरक्षित रहे, बढ़वार अच्छा रहे, उत्पादन अच्छा हो। तो एकर वास्ते जितना अगर ज़्यादा बारिश है तो हमने के कोशिश करे के चाहिए कि जल निकासी जे पानी के निकासी के व्यवस्था रखिए। और ओकर बाद हमने के एक चीज के जरूरी है कि देखा पानी अगर जमा हो जाओ तो वहाँ पे ज्यादा देर जड़ में पानी रह से ओकर में पौधा में सड़न हो सको है और रोग बढ़ सको है। और दूसरी बात है कि हमने के एक अच्छा और रोग मतलब स्वस्थ बीज और रोग प्रतिरोधी किस्म के भी चुनाव करना है। और उर्वरक के भी प्रबंधन के हमने के ध्यान देना है कि सही मात्रा में और संतुलित मात्रा में हमने के मिले। और ओकरा साथे साथ एक सबसे जरूरी बात जे हमने फसल लगे लही है ओकर में हमने के निराई गुड़ाई भी हमेशा समय पर करना है। और अगर लगे कि कीट और रोग के हुए के डर है तो हमने के ध्यान रखते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बेल वाला जे लत्तर वाला गाछ है ओकर में हमने के सहारा भी देना चाहिए। और फसल के तोड़ाई हमने समय पर करिए। और मौसम के जानकारी जरूर रखिए, मौसम के जानकारी के लेके ओकर अनुसार हमने खेती बाड़ी के काम करिए। तो एक साथे कार्यक्रम खेती बाड़ी से विदा लेवे के भी समय हो गए है। तो हमरा अलका के अनुमति दा जोहार।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।
1: प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन छात्रों के आंदोलन और जेपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सदन में छाया रहा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षाएं रद्द कर पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलनरत छात्रों ने सरकार के साथ वार्ता के लिए 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची जारी कर दी है। प्रतिनिधिमंडल में रविन्द्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविन्द्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं। अब सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच प्रस्तावित वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हैं। गुमला के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिलेश्वर महतो ने जिले के नागरिकों से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 4 सितम्बर तक चलेगी। पाकुड़ में आज भारतीय रिजर्व बैंक और जिला अग्रणी बैंक की ओर से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बैंक अधिकारियों, उद्योग विभाग के प्रतिनिधियों और उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में रोजगार सृजन, बैंक ऋण से वित्तीय सहायता और जिले में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। गिरिडीह जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए डायल 112 परियोजना के तहत मिले 32 नए आपातकालीन वाहनों को आज विभिन्न थानों के लिए रवाना किया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुन रही सभी बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगी और अपने दिनचर्या के कामों को निपटाकर अपने पसंदीदा कार्यक्रम को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। तो चलिए, आपके इंतजार की घड़ियां होती है खत्म और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: बहनों, उम्मीद है आपको ये प्यारा सा गीत जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए इस प्यारे से गीत के बाद हम कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं आगे। बहनों, जैसा कि स्तनपान माँ और शिशु दोनों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सबसे मुख्य आधार है, यह न केवल शिशु को संपूर्ण पोषण देता है बल्कि माँ को भी कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जन्म के पहले 6 महीनों तक शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए। शिशु और माँ के स्वास्थ्य के लिए इसके कई लाभ हैं। आइए जानते हैं शिशु के लिए स्तनपान के लाभ। माँ का दूध शिशु की बदलती जरूरतों के अनुसार जरूरी प्रोटीन, वसा और विटामिन प्रदान करता है। दूध में मौजूद एंटीबॉडीज शिशु को संक्रमण, दस्त और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे DHA शिशु के दिमागी विकास और सीखने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। स्तनपान से भविष्य में मोटापा, अस्थमा, एलर्जी और type 2 diabetes का खतरा कम होता है। माँ की स्पर्श से ही शिशु का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और उसे अच्छी नींद भी आती है। बहनों, ये तो बात हुई स्तनपान से बच्चों को होने वाले लाभ के बारे में। अब आइए जानते हैं कि माँ के लिए स्तनपान के क्या लाभ है। बहनों, यह गर्भाशय को वापस सामान्य आकार में लाने और डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को कम करने में मदद करता है। स्तनपान कराने से अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है जिससे प्रसव के बाद वजन घटाने में मदद मिलती है। यह स्तन और अंडाशय के कैंसर के जोखिम को भी काफी कम करता है। यह माँ में प्रसवोत्तर अवसाद और तनाव को कम करने में सहायक है। इससे भविष्य में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। इसके साथ साथ बहनों, यह भी जानना जरूरी है कि जन्म के तुरंत पहले घंटे के भीतर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध शिशु को जरूर पिलाना चाहिए। यह शिशु का पहला टीका माना जाता है। पहले 6 महीने तक शिशु को ऊपर से पानी, शहद या घुट्टी देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। 6 महीने के बाद ही पूरक आहार शुरू करने के साथ साथ कम से कम 2 साल तक स्तनपान भी जारी रखना चाहिए। बहनों, बातें तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसी क्लिक में, अरे वाह!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स,

0: पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, आइए सुनते हैं एक वार्ता, बच्चों और माताओं का पोषण आहार। वार्ताकार हैं देविका वर्मा।
2: नाइटिंगल ने कहा था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य का रहस्य लोगों के घरों में ही है। स्वास्थ्य एवं विकास, पोषण तथा अन्य पर्यावरण संबंधी स्थितियों जैसे आवास, जल आपूर्ति, सफाई आदि पर निर्भर करता है। बच्चों के स्वास्थ्य का सबसे अधिक क्षति कुपोषण से, विशेष करके प्रोटीन, कैलोरी, माली न्यूट्रिशन से होती है। यह बात संपूर्ण विश्व में होने वाले अध्ययनों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। विटामिन ए डी की कमी से बच्चों के शरीर पर अपूर्णीय क्षति होती है। उनमें अंधेपन के लक्षण धीरे धीरे आने लगते हैं। ऐसी स्थिति बनी रहती है तो एक दिन उन्हें पूर्ण अंधापन आ जाता है। अतः बचपन से ही कुपोषण से बचाव की उचित तथा उचित पोषण प्रदान करने की व्यवस्था जरूरी है। अधिकांश भारतीय परिवारों के आकार विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में बड़े होते हैं। यदि गर्भावस्था में तथा उसके बाद महिलाओं को समुचित पोषण मिलता है और उनके शिशु की देखरेख का प्रबंध हो सकता है, जैसा कि अक्सर पश्चिमी देशों में होता है, तो वे भी राष्ट्रहित के उत्पादनों में हिस्सा बटा सकती हैं तथा पुरुषों की बराबरी में राष्ट्र के विकास में निजी भूमिका निभा सकती हैं। यदि आहार के नमूने में, बनाने की शैली में, चुनाव के तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन लाया जाए तो कम खर्च में पौष्टिक आहार बच्चों व माताओं को मिल सकता है। जैसे सब्जी की जगह प्यूरी बनाकर, जैसे गाजर पत्तेदार सब्जी को स्वादिष्ट तरीकों से बनाकर हेल्दी फूड बन सकता है। संयमी, धैर्यवान तथा कृत संकल्प होने की जरूरत है। महिलाओं को इस संबंध में पोषण संबंधी शिक्षा देना जरूरी है। मातृ शिशु पोषण का तात्पर्य हजार दिनों की अवधि के दौरान माँ और बच्चों के पोषण से है, जो गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक होता है। जन्म के बाद प्रारंभिक कुछ दिनों तक बच्चों को माता से गाढ़ा पीले रंग का दूध प्राप्त होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें प्रोटीन एवं विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों को प्रारंभिक कुछ माहों तक संक्रमण से बचाता है और पाचक एंजाइम

नींव का निर्माण होता है। पोषक आवश्यकताएं प्रति यूनिट शरीर भाग पर इसलिए अधिक होती है क्योंकि इस अवधि में उसकी वृद्धि तीव्रता से होती है। जन्म पश्चात लगभग 9 माह तक वह तेजी से वसा का संचय करता है, उसके बाद मात्रा कम हो जाती है। उत्तम पोषित शिशु में पेशी ऊतक मजबूत होते हैं। बच्चों के जन्म के बाद 6 माह की उम्र तक उसे माँ के दूध से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार है जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात में समावेश रहता है। यह दूध बच्चे के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए उपयोगी होता है। माता का दूध जो बच्चों के पाचन के योग्य होता है। बहनों, माँ का दूध पूर्णतः जीवाणु रहित होता है और इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में

खा लिया तो मेरा बेबी बीमार तो नहीं हो जाएगा। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है, पर किसी कारणवश ये नहीं मिल पाए तो अन्य प्रकार का दूध यानी गाय का दूध, कुछ डिब्बा बंद दूध दिया जा सकता है। कुछ अवस्था में माता का दूध बच्चे को नहीं देना चाहिए। यदि माता को कोई दीर्घकालीन बीमारी यथा क्षय रोग, हृदय रोग आदि हो, शिशु में प्रोटीन की कमी माता के दूध छूटने पर भी होती है। यदि उस समय गाय का दूध उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो यह कमी पूरी हो जाती है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है जो बच्चे के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि के लिए तथा हड्डियों एवं दांतों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस की अधिक आवश्यकता होती है। माता का दूध एवं गाय का दूध बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो इन खनिजों की पूर्ति होती रहती है। 4 से 6 माह के बच्चों को दाल का पानी, अंडे की जर्दी तथा सब्जियों का सूप दिया जा सकता है, जिससे बच्चे के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन तथा विटामिन होते हैं। गेहूं का दलिया, चावल एवं मूंग दाल की खिचड़ी, सूजी की खीर, कॉर्नफ्लेक्स आदि 7 से 8 माह के बच्चे को देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे की पाचन संस्थान भोजन पचाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसी प्रकार बहनों, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए दूध, अंडे, मछली, दाल, अनाज से बने खाने, चावल, खिचड़ी, दलिया इत्यादि, फल और हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। साथ ही घी, तेल आवश्यकता अनुसार दे सकती हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आयरन आवश्यक है। कहते हैं एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है तथा वे अपने बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण एवं विकास कर सकती है। गर्भावस्था से ही माता एवं शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखने से दोनों का जीवन स्वस्थ एवं खुशहाल रहेगा। एक महिला जो माँ बनने वाली है, उन्हें इस दौरान पौष्टिक एवं संतुलित आहार मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुपोषण एवं अपर्याप्त पोषण दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए माँ बनने वाली महिला के आहार में दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा, दाल, सूखे मेवे आदि देने चाहिए। भ्रूण माता के रक्त से कैल्शियम शोषित कर अपनी आवश्यकता पूरी करता है, परंतु माता के शरीर में इसकी कमी होने से माता की अस्थियां एवं दांत कमजोर हो सकते हैं। इसलिए कैल्शियम युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए तथा कैल्शियम के शोषण के लिए विटामिन डी भी आवश्यक है। जब कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही होती है तो इस दौरान उन्हें तरल पदार्थ का खूब सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है, यथा संभव नूडल्स, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, मिठाई, ठंडे पेय का सेवन कम करना चाहिए। डिब्बाबंद भोजन, परिष्कृत मांस और सॉसेस कम चुने, खूब पानी पिए। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी वाले आहार से माताओं में एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इनकी कमी से बच्चों में मृत जन्म, कम वजन, कमजोरी और विकास में देरी भी हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में अनाज खाएं। चावल, पास्ता, ब्रेड से ऊर्जा और बी समूह के विटामिन प्राप्त होते हैं। साबुत अंकुरित अनाज विटामिन युक्त होते हैं। दिन भर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, हल्के फुल्के व्यायाम करके सक्रिय बने रहना, पर्याप्त नींद लेना, पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य बनाकर रखना अच्छा है। यदि पोषण आहार संबंधी जानकारी महिलाओं के पास है तो वे अपने स्वयं को तथा बच्चे को मामूली सी हरी पत्ती वाली सब्जियों से, पालक के थोड़े से जूस से, सस्ते फलों से ही पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और स्वयं को, अपने बच्चों तथा पूरे परिवार को स्वस्थ तथा रोग मुक्त रख सकती हैं। इसके लिए पोषण संबंधी शिक्षा का प्रसार किया जाए,
उसमें

0: प्रदेश के लोगों की भोजन शैली, भोजन संबंधी आदतें, परंपराओं का ध्यान रखना जरूरी है। हेल्थ सेंटर या मातृ शिशु कल्याण केंद्र जैसे संगठन इस संबंध में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में महिलाएं एक स्थान पर एकत्रित होती हैं। यह एक अच्छा अवसर है जहां महिलाओं को पोषण शिक्षा एवं इनके व्यवहारिक प्रदर्शन जैसे तरह तरह के फूड स्टॉल लगाकर जानकारी दी जाती है। अनचाही परंपराएं जो आहार से संबद्ध है तथा प्रत्येक समुदाय में गहरी जड़ जमाए हैं, उनसे मुक्ति महिलाओं को शिक्षित करके मिल सकती है।
1: बहनों, इस जानकारी के बाद चलिए हम बात करते हैं कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार से जुड़े निर्णयों में माँ की क्या भूमिका होती है। बहनों, माँ बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और वो इनकी बुनियादी होती है। माँ को बच्चे की पहली गुरु कहा जाता है जो उसके पूरे जीवन की नींव रखती है। माँ बच्चे को भाषा, अक्षरों और बुनियादी चीजों की पहचान कराना सिखाती है। बच्चे की ताकत और कमजोरियों को सबसे करीब से देखती है जिससे सही करियर या विषयों को चुनने में मदद मिलती है। रोज पढ़ाई की आदत डालना और स्कूल के होमवर्क में मदद करना माँ की देखरेख में बेहतर होता है। मानसिक प्रोत्साहन भी बढ़ाती है। परीक्षा के तनाव के समय माँ बच्चे का हौसला बढ़ाती है और उसे असफलताओं से लड़ना सिखाती है। बहनों, ये तो हो गई शिक्षा के क्षेत्र में माँ की भूमिका। इसके अलावा स्वास्थ्य और संस्कार के निर्णयों में भी माँ की अहम भूमिका होती है। जैसे बच्चे के शारीरिक विकास के लिए संतुलित और पौष्टिक खाना तय करने में माँ की मुख्य भूमिका होती है। रोज ब्रश करना, हाथ धोना और साफ सफाई रखने जैसी सेहत से जुड़ी आदतें माँ ही सिखाती है। बच्चे के समय पर वैक्सीनेशन और बीमार होने पर तुरंत सही डॉक्टर या घरेलू उपचार का निर्णय भी माँ लेती है। बच्चा सुरक्षित महसूस करे और अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर सके, इसके लिए माँ एक सुरक्षित माहौल देती है। ईमानदारी, दया, बड़ों का सम्मान और दूसरों की मदद करना माँ अपने व्यवहार और कहानियों से सिखाती है। अनुशासन, सही और गलत के बीच का अंतर समझाकर बच्चे के व्यवहार को सही दिशा देने का काम भी माँ करती है। सांस्कृतिक पहचान, परिवार की परंपराओं, त्योहारों के महत्व और अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ बच्चों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। बच्चों को एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाने के लिए उसमें सही उम्र में सही संस्कार डालने का काम भी करती है। इस तरह बहनों, हम देख सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार से जुड़े निर्णयों में माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। बहनों, इसी के साथ साथ कार्यक्रम अंगना से विदा लेने का वक्त हो चला है, तो शगुफ्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: का याग्निक कुमार सानू और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म छुपा रुस्तम का ये गीत। आइए अब सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आवाज़ें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। फिल्म का नाम था आज का अर्जुन। और अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

0: हम हो गए आपके। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।
1: हे

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना

0: फसल बीमा जरूर कराए।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराए।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में जेपीएससी में अनियमितता के मुद्दे पर विपक्ष ने अदालत की निगरानी में की सीबीआई जांच की मांग। सरकार ने कहा सत्र में चर्चा के दौरान हर सवाल का देंगे जवाब। राज्य सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच वार्ता की पहल तेज। संशोधित सूची जारी, बातचीत के लिए 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल तैयार। जमशेदपुर से 10 करोड़ नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा जन जागरण से बने जन आंदोलन। एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह खदान को फिर मिला 5-स्टार सम्मान। लगातार दूसरे वर्ष देश में पहले स्थान पर रही कोयला खदान। और डोरंट कप में एससी दिल्ली की शानदार जीत। रांची में डिफेंडर्स एफसी को 7-0 से दी करारी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन छात्रों के आंदोलन और जेपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सदन में छाया रहा। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षाएं रद्द कर पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की।
6: भाई इन मुद्दों पर छात्र नौजवान सड़क पर बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, और सरकार को एग्जाम रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से करानी चाहिए। कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस पर आप कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, नहीं तो लगातार ऐसे ही चलते रहेगा।
5: वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस विषय पर पहले से ही चर्चा हो चुकी है और विपक्ष को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।
7: जो आप सरकार के ऊपर या जो आपके मन में शंकाएं हैं, आप अपने उस वाद विवाद के क्रम में बोलिए, सरकार पूरी तरह से उत्तर करने के लिए तैयार है। बीच में सदन को डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार विपक्ष को नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय।
5: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों ने सरकार के साथ वार्ता के लिए 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची जारी कर दी है। प्रतिनिधिमंडल में रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं। अब सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच प्रस्तावित वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इधर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में निकाले गए छात्र मार्च के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने कथित रूप से काली स्याही फेंक दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि हमला करने वाला युवक एक छात्र था और उसने खुद को एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताया। नेहा बोरा ने घटना के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार से छात्रों की मांगों का समाधान करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विधानसभा में आज भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल और परसों यानी 8 और 9 अगस्त को मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
8: 8 अगस्त, 9 अगस्त शनिवार रविवार को स्पेशल कैंप आयोजन किया जा रहा है। पात्र भारत का नागरिक, उनका उम्र 1 अक्टूबर 2026 में 18 हो गया, नहीं मतलब 18 हो रहा है, उनका सबसे अनुरोध है फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें ताकि आपका नाम हम लोगों का मतदाता सूची में शामिल कर सकेंगे। साथ ही साथ किसी परिवार में 2 और

0: अधिक बूथ में रहने पर आपका फॉर्म 8 भरवा है।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एसएलबीसी को एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक गुरु प्रसाद गोंड के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 96वीं राज्य स्तरीय बैंकर समिति की जून 2026 की स्मारिका पुस्तिका भेंट की। इस अवसर पर समिति के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियाँ, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
3: यहाँ मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खान पान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 10 करोड़ नशामुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने नशा मुक्ति को स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण का सामूहिक संकल्प बताते हुए कहा कि यह अभियान जन जागरण से आगे बढ़कर जन आंदोलन का रूप ले। राज्यपाल ने कहा कि परिवार, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों, मीडिया और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से ही नशा मुक्त समाज बनाया जा सकता है। राज्यपाल ने आज जमशेदपुर में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में कहा कि जीवन की नई यात्रा का यह प्रारंभ है और उन्होंने विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने को कहा। हजारीबाग जिले की एनटीपीसी की पकरी बरवाडी कोयला खदान को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और जिम्मेदार खनन के लिए एक बार फिर 5-स्टार रेटिंग मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोयला मंत्रालय के कोयला नियंत्रक कार्यालय ने यह रेटिंग प्रदान की है। लगातार दूसरे वर्ष पकरी बरवाडी खदान देश की 5-स्टार रेटिंग प्राप्त कोयला खदानों में पहले स्थान पर रही है।
4: ये पकरी बरवाडी को ये दूसरा साल 5-स्टार मिला है और दूसरा साल लगातार ये फर्स्ट रैंक में आई है कंट्री में। ऑल ओवर आई थिंक 206 माइंस है ओपन कास्ट, उसमें फर्स्ट पोजीशन लाना ये अपने आप में एक बहुत गर्व का बात है और हम लोग सारे एनटीपीसीएंस इस बात से बहुत ही गर्वान्वित हैं। और ये उच्च स्थान पर आके ये उच्चतम अपने दक्षता को हम लोग हमेशा मेंटेन रखेंगे।
1: IIT ISM धनबाद के खनन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर तथा टेक्समिन के निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में देश के चुनिंदा वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल होंगे।
5: सो हमारा नॉमिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से हुआ था क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है माइनिंग मिनरल अर्थ साइंसेज क्रिटिकल मिनरल एरिया में है और हमें प्रेसिडेंट मैडम के यहाँ से एक इनविटेशन आया है एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए 15 अगस्त की संध्या को।
1: रांची के हीनो में आज भारत सरकार ने आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LMCO के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया। यह कार्यालय पूर्व

0: पूर्वोत्तर तथा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांगजनों की मदद करेगा। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए डोरंट कप ग्रुप सी के मुकाबले में एससी दिल्ली ने श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी को 7-0 से करारी शिकस्त दी। एससी दिल्ली ने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखते हुए बड़ी जीत दर्ज की। और अब अंत में मुख्य समाचार। जेपीएससी में अनियमितता के मुद्दे पर विपक्ष ने अदालत की निगरानी में की सीबीआई जांच की मांग। सरकार ने कहा, सत्र में चर्चा के दौरान हर सवाल का देंगे जवाब। राज्य सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच वार्ता की पहल तेज। संशोधित सूची जारी। बातचीत के लिए 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल तैयार। जमशेदपुर से 10 करोड़ नशामुक्त भारत अभियान की शुरुआत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, जन जागरण से बने जन आंदोलन। एनटीपीसी की पकड़ी बरवाडीह खदान को फिर मिला 5-स्टार सम्मान। लगातार दूसरे वर्ष देश में पहले स्थान पर रही कोयला खदान। और डोरंट कप में एससी दिल्ली की शानदार जीत। रांची में डिफेंडर्स एफसी को 7-0 से दी करारी शिकस्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लेते हुए जमशेदपुर के दो मुहानी नदी संगम तट पर एक पौधा भविष्य के नाम अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पद्मश्री चामी मुर्मू, जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और नागरिकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आज से ही प्राकृतिक संरक्षण जरूरी है।
2: जिस तरीके से पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से चिंतित है और ग्लेशियर डूबने के ग्लेशियर जो है गर्मी से कुछ कुछ गलने लगा है, कई देश ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में पानी से विलुप्त हो जाएंगे, कुछ जगह ऐसी स्थिति है जहां पर भूगर्भ का जल जो है वो पाताल लोक से भी नीचे चला गया है, पानी के लिए हाहाकार मचा है। एक तरफ लोग डूबने के कगार पर है, एक तरफ पानी की बूंदों के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये अतिवृष्टि अनावृष्टि ये एक
1: जमशेदपुर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली। इस दौरान युवाओं ने कहा कि वे इस संदेश को अपने परिवार और समाज तक पहुंचाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
3: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पीएम मोदी ने हमें बहुत अच्छे से बहुत कुछ नशा मुक्त भारत के बारे में बताया, उन्होंने युवाओं को, जेंजीज को भी संबोधित किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का।
1: जमशेदपुर में पुलिस ने अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक इहतेशाम वकारिब के नेतृत्व में क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। नई व्यवस्था के तहत पूरे जिले को 206 बीटों में बांटा गया है और प्रत्येक बीट की जिम्मेदारी एक पुलिस पदाधिकारी को सौंपी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीट पदाधिकारी नियमित गश्त के दौरान चिन्हित स्थानों पर लगे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, जिससे उनकी उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम

0: डिजिटल मॉनिटरिंग हो सकेगी।
1: ऑलरेडी जो पेट्रोलिंग हमारी चल रही है उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम इन्हांस के लिए डिजिटल बीट पुलिसिंग का शुरुआत किया है और पूरे शहर को और ग्रामीण क्षेत्र को 206 बीट में बांटा गया और शहर में 102 है, ग्रामीण क्षेत्र में 104, ताकि हमारी जो भी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। शहरी क्षेत्र के सभी बीट में बीट ऑफिसर्स थाना से डिप्यूट किया गया है ताकि हम लोग अपराध पे जो क्राइम आंकड़ा है उसके एनालिसिस करके ये क्राइम हॉटस्पॉट मैपिंग करके 5 साल का डेटा के अनुसार ये मैपिंग किया गया है। लगभग 1000 QR कोड सभी लगे हैं जो की संख्या बढ़ के फ्यूचर में 2000 हो जाएगा।
0: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को जमशेदपुर में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर शहर में सांस्कृति झांकियां, पारंपरिक नृत्य, सम्मान समारोह और जनसभा का आयोजन होगा। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम झनकार।

थ्री इडियट्स, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में। फिल्म का नाम है खुदगर्ज़।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे शान से। संकलन एवं वाचन है परमेंद्र कुमार मिश्रा के, प्रस्तुत करता है।

0: राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।
1: कार्यक्रम खेलेंगे सांसे के आज के इस ताजे अंक में आप सभी खिलाड़ियों खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वीकार करें अपने रेडियो दोस्त परमिंद्र का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन को स्वस्थ मजबूत और चुस्त बनाते हैं। इससे शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से बचाव होता है और अनुशासन आत्मविश्वास और टीम भावना भी मजबूत होती है। श्रोताओं, आज के इस ताजे अंक में हम बातें करेंगे टेबल टेनिस खेल की और जानेंगे इस खेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। टेबल टेनिस खेल का इतिहास बहुत ही पुराना है। टेबल टेनिस की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में हुई। सन 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी ITTF की स्थापना हुई और उसी साल पहली विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप कराई गई। ओलंपिक में यह खेल 1988 में शामिल हुआ। चीन इस खेल में सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है। यह खेल तेज रिफ्लेक्शन कंट्रोल संतुलन और रणनीति का अच्छा मेल है। टेबल टेनिस का हर गेम 11 पॉइंट तक खेला जाता है और हर खिलाड़ी को कम से कम 2 पॉइंट से आगे होना जरूरी होता है। मैच आमतौर पर बेस्ट ऑफ 7 सेट्स का होता है। जो खिलाड़ी तेज सर्विस, सटीक प्लेसमेंट और अच्छे रिफ्लेक्स, स्मार्ट रणनीति और कम गलतियां करता है वही अक्सर जीत हासिल करता है। श्रोताओं, टेबल टेनिस खेल के कुछ अहम बातों को जानेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हजारीबाग टेबल टेनिस खेल के कोच और अंपायर रविंद्र कुमार जी से और जानेंगे कि टेबल टेनिस खेल की भावी रणनीतियां क्या है और इस खेल के माध्यम से हजारीबाग का नाम किस ऊंचाई तक पहुंचने वाला है।
2: श्रोताओं, इस वक्त हमारी बातें हो रही है रविंद्र कुमार जी से। इंटरनेशनल एम्पायर हैं और नेशनल कोच हैं। सर, आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आप हमें ये बताइए कि जो टेबल टेनिस का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वो क्या है और पहले क्या था और आने वाले वर्षों में हजारीबाग के खिलाड़ियों को आप कहाँ देखना चाहते हैं?
3: हजारीबाग अभी टेबल टेनिस गेम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी लगभग 7-8 बच्चे हमारे नेशनल खेलने जाते हैं। हालांकि नेशनल में अभी तक हमारा कोई अचीवमेंट नहीं रहा हजारीबाग का, लेकिन आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं नेशनल में हमारा कुछ मेडल आएगा। अभी हमारा पिछले संडे को डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हुआ था जिसमें लगभग 100 बच्चे भाग लिए थे और उसमें से फर्स्ट रैंकिंग अभी रांची में हुआ, सेकंड रैंकिंग अभी जमशेदपुर में होने जा रहा है। फर्स्ट रैंकिंग में लगभग 15-20 बच्चे जो है स्टेट खेलने गए थे, उसमें 7-8 मेडल आया है। ठीक है, अब वो फिर नेशनल में जाएंगे। नेशनल में इस बार तो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में हम उम्मीद करते हैं कि हजारीबाग को 1-2 नेशनल लेवल का मेडल मिलेगा। अभी हम लोग एसोसिएशन की ओर से 1-2 बोर्ड प्रोवाइड किए हैं और वो हमें गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिलती है। हम कुछ लोगों ने डोनेट किया है, उसी के मदद से हम लोगों ने बोर्ड खरीदा है और बोर्ड जो अभी हम एक तो पुराना बोर्ड है, एक बोर्ड हम लोग एकदम इंटरनेशनल लेवल का है। इसके अलावा नमन विद्या स्कूल जो है हमारा टेबल टेनिस में काफी सहयोग कर रहा है, उसके वहाँ पे हमारा 6-7 बोर्ड इंटरनेशनल लेवल का है। वहाँ 2 कोच भी हैं जो कि बच्चों को सिखाते हैं, तो हम वहाँ से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे निकलेंगे।
2: तो वहाँ जो नमन विद्या की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ उसी स्कूल के बच्चे उसमें प्रैक्टिस करते हैं या आपके जितने भी हजारीबाग के टेबल टेनिस एसोसिएशन के बच्चे वो भी वहाँ खेलते हैं?
3: ऐसा है कि ऐसे तो वो स्कूल के लिए ही व्यवस्था किया है स्कूल की तरफ से ही, लेकिन वो किसी और भी जितने भी बच्चे खेल रहे हैं सबको बुलाते हैं कि आप आके खेल सकते हैं,
2: प्रैक्टिस कर सकते हैं।
3: सुविधा स्पेस ज्यादा है इसलिए, और वो कभी मना नहीं करते हैं, बोलते हैं कि आप आइए कभी भी, कोई भी आज जा सकता है वहाँ खेलने के लिए। अभी हमारे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं भैया मुरारी सिन्हा और मैं रविंद्र कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और ट्रेजरर अमित मल्होत्रा जी हैं और इसके अलावा और भी सदस्य हैं। अभी जो है अध्यक्ष जो है चुना जाना बाकी है। वैसे हमारा जो कमिटी है वो फुल प्रेजेंट काम कर रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में टेबल टेनिस अच्छा करेगा।
2: हमारी शुभकामनाएं हैं उन बच्चों के साथ कि वो टेबल टेनिस में हजारीबाग की तरफ से खेले और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे। रविंद्र कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने अपना बहुमूल्य और बेस्ट कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: धन्यवाद परमिंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज हमने बातें की हजारीबाग के कुछ नामचीन खिलाड़ियों से भी, आइए जानते हैं टेबल टेनिस खेल के बारे में उनकी क्या राय है, उनकी खुद की जुबानी। हमारे बीच है सतीब सुधांशु और साथ ही आर्यन अग्रवाल भी।
4: टेबल टेनिस स्कूल टूर्नामेंट स्कूल में प्रमोट हुआ था तो खेलना चालू किए, तो उधर से
1: आपकी कहाँ से हुई?
4: सेंट जेवियर स्कूल।

0: तो वहाँ से टेबल टेनिस का जर्नी शुरू हुआ। वहाँ पे हम लोग रविंदर सर मिले, मुरारी सर मिले, ये सब सीनियर प्लेयर्स थे उस समय, ये लोग खेल रहे थे, ये लोग ही बताए कि कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है। ये लोग के गाइडेंस से हम लोग अलग अलग जगह टूर्नामेंट्स खेले और धीरे धीरे करके डिस्ट्रिक्ट खेले, फिर डिस्ट्रिक्ट में कभी जीते तो फिर जाके नेशनल्स खेले, तो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किए वहाँ पे। और ये अभी मेरा पार्टनर जो है अर्नब अग्रवाल, अभी करंट डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी बना हुआ है। अभी इसी कुछ 2 वीक्स पहले एक टूर्नामेंट हुआ था रांची में, उसमें ये विनर भी था अपनी कैटेगरी।
1: जो नेशनल खेल में आपने हिस्सा लिया तो वहाँ आपका मुकाबला किनसे हुआ और वहाँ पर आपका प्रदर्शन कैसा रहा?
0: मतलब इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं, पर मेरा प्रदर्शन उतना तो अच्छा नहीं हुआ। मतलब बहुत तरह का नेशनल होता है, क्लस्टर नेशनल होता है, CBSE नेशनल होता है, ओपन नेशनल होता है। इसके मदद से मतलब हमको लगता है दुनिया का, इंडिया का तो ऑलमोस्ट हर एक कोने में हम लोग एक टूर्नामेंट तो जरूर खेले टेबल टेनिस के मदद से। पापा घुमाने नहीं लगे पर टेबल टेनिस जरूर घुमाए। जूनियर प्लेयर्स जो हजारीबाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोग साथ खेलते हैं, अब ये मेरे लिए एक अच्छा हेल्दी लिविंग का एक जरिया बन चुका है। हाँ, अब पास ऑन हो चुका है एक जर्नी फ्रॉम मी टू हिम। एक्चुअली 2-3 प्लेयर्स हैं हजारीबाग के जो इंडिया भी खेल चुके, नेपाल जाके खेले, और खेलने से पहले मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, खेलने के बाद दिमाग खुला तो परसेंटेज भी ठीक होते होते गया। तो ये था मेरा जर्नी उसके साथ।
1: मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से आगे उत्तरोत्तर विकास करें और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
1: बीच एक और खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, अर्नव जी। तो अर्नव जी, आप हमें ये बताइए कि टेबल टेनिस आप कितने वर्षों से खेल रहे हैं?
2: मुझे खेले हुए हो गए 6 से 7 साल हो गए। मेरी स्कूलिंग हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल से, मैं अभी 10th ग्रेड में हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट में अंडर 17 में गोल्ड, अंडर 19 में गोल्ड एंड मेंस कैटेगरी में गोल्ड ये स्कोर किया। एंड स्टेट्स में अभी मेरा पोजीशन रहा अंडर 17 में रैंक 1, अंडर 19 में 3rd-4th था। अभी तो मैं स्टेट्स वगैरह खेला हूँ और नेशनल्स भी खेला हूँ बहुत सारे, एंड मेरा गोल है कि मैं आगे जाके नेशनल्स में मेडल्स लाऊं एंड इंडिया रिप्रेजेंट करूँ। मैंने अंडर 17-19 और मेंस नेशनल्स में भी वही खेलता हूँ जो स्टेट्स में खेलता हूँ, सेम कैटेगरीज।
1: अर्नव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार। सैली निहल जी, टेबल टेनिस पर क्या कुछ आपका कहना है, आप बताएं।
4: मैंने टेबल टेनिस बहुत पहले से शुरू किया था। मेरे पिताजी श्री रविंद्र कुमार बहुत पुराने टाइम से टेबल टेनिस के कोच रह चुके हैं और वो इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं टेबल टेनिस खेलना शुरू करूँ। तो मैं बहुत छोटे से खेलना शुरू की और उस वजह से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, जिसमें मैंने इंटर स्कूल में बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं और फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं बहुत टाइम से चैम्पियन रह चुकी हूँ और मैंने स्टेट लेवल भी खेला है। मैंने इंटर स्कूल जो सहोदया वाली इंटर स्कूल कंपटीशन होती है और फिर स्कूल में भी बहुत सारी टेबल टेनिस की जैसे स्पोर्ट्स मीट में कंपटीशन वगैरह होती है, तो उसमें मैंने पुरस्कार जीता। जैसे इंटर स्कूल में मैंने 1st पोजिशन प्राप्त किया था और जिस कारण से हमारे स्कूल को भी ओवरऑल परफॉर्मेंस में ट्रॉफी लेने में मदद मिली थी। फिर मैंने इस बार अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ था जिसमें अबव 19 वाली कैटेगरी में मैंने 2nd पोजीशन प्राप्त किया था। और भी बहुत सारे कंपटीशन जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन बहुत साल से हुए थे, तो उसमें भी मैंने 1st पोजीशन बहुत साल प्राप्त किए। स्टेट लेवल भी मैंने मुझे मौका मिला था कुछ बार खेलने का। उसमें खेल कूद और पढ़ाई को भी बीच में संबंध बना के रखने के लिए और टाइम मैनेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हमेशा छोड़ना ही पड़ेगा। आप सब कुछ नहीं चाह सकते कि आप तो कर सकते हैं, आपको दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है। कभी खेल में आपका 100% होगा, कभी पढ़ाई में आपका 100% होगा।
1: प्रतिभाशाली खिलाड़ी श्रीनी मुनि जी यहाँ पर उपस्थित है और इनसे आज जानते हैं खेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें।
5: बचपन से ही मुझे काफी रुचि रही है खेल के प्रति, एंड बास्केटबॉल एक ऐसा गेम था जो स्कूल टाइम से मैं बहुत उसकी तरफ अट्रैक्टेड रही, मुझे बहुत मन था। एंड बास्केटबॉल आई प्लेड अपने पूरे स्कूल जर्नी में, इवन कॉलेज में। बट टेबल टेनिस आई हैव स्टार्टेड 3 days back टू चैलेंज माई सेल्फ, कि मैं मेंटली खुद को चैलेंज कर पाऊँ और न्यू स्किल्स सीखूँ, क्योंकि जो माइंडसेट इस टेबल टेनिस में चाहिए इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू नीड इन बास्केटबॉल। सो आई गेस बास्केटबॉल की डिसिप्लिन टेबल टेनिस में काम आया मुझे।
1: बास्केटबॉल में आपका क्या कुछ परफॉर्मेंस और क्या अचीवमेंट रहा?
5: सो बास्केटबॉल में आई स्टार्टेड विथ जूनियर चैम्पियनशिप वेयर वी वन क्लस्टर्स जोनल एंड देन वेंट ऑन टू प्ले नेशनल्स। आई प्लेड 4 कंसेक्यूटिव नेशनल्स ड्यूरिंग माई स्कूल ईयर्स, इन विच इन वन वी वर लकी इनफ टू गेट सिल्वर मेडल विच वॉज कंडक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। And then we played open championship also under 18, under 16, tournaments, a lot of tournaments. And then when I went to Delhi University, there we played inter-colleges tournament also. So.
1: आपने हजारीबाग का नाम रोशन किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.

0: शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
1: कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है खेल मंत्र। टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी जॉन ओवे वार्डनर कहते हैं कि हर मैच नई चुनौती लाता है, इसलिए सीखना कभी बंद मत करो। कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है खेल टिप्स। हर दिन थोड़ा समय खुद को बेहतर बनाने में जरूर लगाएं। लगातार छोटे छोटे सुधार लंबे समय में बड़ी कामयाबी दिलाते हैं। नियमित अभ्यास रखो, सर्व और फोरहैंड बैकहैंड पर मेहनत करो, फुटवर्क तेज रखो ताकि हर गेंद तक पहुंच सको। अपनी विरोधी की कमजोरी को समझे, उसी हिसाब से रणनीति बनाए। नियमित अभ्यास, अनुशासन और सीखने की असली इच्छा ही जीत की चाबी है। और अब है कार्यक्रम का अगला सेगमेंट सुनो खिलाड़ियों। पिछली गलतियों से सीखकर और लगातार प्रैक्टिस करना टेबल टेनिस खेल की जीत के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और हाँ, कॉन्फिडेंस और सुरक्षात्मक सर्विस आपको जीत के शीर्ष तक अवश्य ले जाएगी, इसलिए इन मानकों का माइंडसेट के साथ टेबल टेनिस कोर्ट में आप अवश्य उतरे। और अब चलते कार्यक्रम के अगले खंड की ओर, जो कि है खेल अपडेट्स। भारतीय महिला टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे में एक टेस्ट, तीन वनडे के साथ ही तीन T20 मुकाबले भी खेलेगी। तीन भारतीय युवा एथलीटों ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड के जोस बटलर ने T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वह T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। लियोनेल मेसी ने विश्व कप के बाद बुधवार को पहले दो गोल किए। इसकी मदद से इंटर मियामी ने लीग कप में एटलेटिको सान लुइस को 4-2 से हरा दिया। दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में 1 से 4 अगस्त तक आयोजित वर्ल्ड अर्निस गेम में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। कोरिया में आयोजित बैडमिंटन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से और स्मिता चालिया का मुकाबला जापान की हेना अकेची से हो रहा है। साथ ही आज नेशनल जेवलिन डे के अवसर पर देश भर में कई स्थानीय और जिला स्तर पर एथलेटिक्स और जेवलिन थ्रो से जुड़ी प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और साथ ही जयपुर में सब जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता भी जारी है। तो दोस्तों, ये थी खबरें कुछ खेल जगत से जुड़ी हुई। कार्यक्रम से विदा लेते हुए हम तो बस यही कहेंगे, रैकेट की हर चोट जीत की नई उम्मीद जगाती है। टेबल टेनिस हमें धैर्य और अनुशासन सिखाती है। तेज सोच, सही समय और निरंतर अभ्यास की पहचान है। यही खेल आत्मविश्वास और सफलता की सच्ची उड़ान है। जाते जाते श्रोताओं, अगर अपना कोई मार्गदर्शन या सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव अवश्य दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर कुछ कर सके। हमारा पता है कार्यक्रम खेलेंगे शान से, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हजारीबाग, पोस्ट बॉक्स संख्या 1, पिन संख्या 8253-01। कार्यक्रम खेलेंगे शान से के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम अपने ताजा तरीन खबरों और खेल जगत की गतिविधियों के रोचक जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें यानी अपने रेडियो दोस्त परमेंद्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है राजीव कुमार, संयोजक विक्रम कुमार रंजन।
2: अभी आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे शान से, संकलन एवं वाचन थे परमेंद्र कुमार मिश्रा के, प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

मोहब्बत कभी कभी। आखिरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है अजूबा।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से।

सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृहमंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहां चर्चा होगी गृहमंत्री अमित शाह जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा।
इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए AI और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा

0: 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की, तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akashvani और रिव्यू ऑफ टुडेज पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स रेड बाय सायरा मुज्तबा।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

मेरा पन्ना। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा था नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख, क्वाथ बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूरमहल महसौल से हैं हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान, हमजा और मुजम्मिल। इसी गीत को सुनना चाहा था चेपाकला बड़का गांव से, आप हैं श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती सभ्या ठाकुर, तिलेश्वरी, श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जीतेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में अभी आपने सुना कुरुक्षेत्र फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा था दिल्ली शहर मोरी गेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। महादेव घाट अमलेश्वर से इसी गीत को सुनना चाहते थे डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अलग अलग और इस गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। बनासो दरियापुर महाराष्ट्र से हैं राजेश चौहान, संदीप चौहान, किशोर चौहान और सचिन चौहान। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। लेवई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से हैं विश्वनाथ साहू, भिलाई से हैं मुकेश वर्मा और दतरेंगी से हैं भगवत वर्मा। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अलग अलग का ये गीत।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9 और 9:15 पर सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
5: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
2: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
5: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
2: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौतों पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
6: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
2: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। दो दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गयी। एक रिपोर्ट।
8: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
9: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
10: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
11: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
12: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And an Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, Titli Maji clinches silver medal in women's 45 kg category. And now the news in detail. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET issue. More from our correspondent.
14: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during a student's protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the Houses. Earlier, both the Houses paid tributes to the freedom fighters to mark the 84th anniversary of Quit India Movement. The Lok Sabha also completed its legislative business by passing the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. As both the Houses were adjourned early, the private members' business could not be taken up. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
13: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew most favored nation status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India took a number of diplomatic steps, including holding Indus Waters Treaty in abeyance, closing Atari checkpost, restricting visas and downsizing diplomatic and official presence at the respective missions following Pulwama terror attack. Dr. Jaishankar stated that military action targeting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir was also undertaken. India attaches high priority on safety and security of Indian vessels and seafarers, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said during media briefing in New Delhi that Indian missions all across the Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said India continues to call for safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways.
15: Section about the safety and security of our vessels and our seafarers. This is a subject of high importance and we attach high priority to the issue. Our missions all across the Gulf region they are in constant contact with the Ministry of Shipping so that as and when any support is required to be provided to our seafarers or Indian flagged ships, they can do that. In fact, they have been running 24/7 helplines so that any person who needs support.
13: Replying to a question on the objections raised by a U.S. lawmaker on the proposed Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, Mr. Jaiswal said India's legislative matters are its internal affairs in which the decisions are taken by the Parliament.
15: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the Parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
13: On last night's telephonic conversation between Prime Minister Narendra Modi and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the MEA spokesperson said both leaders discussed the ongoing situation and developments in West Asia. He added that the call was made from the Israeli side. He added that India has special strategic partnership with the country. The spokesperson said that during the conversation between the two leaders, strengthening the cooperation across various sectors was discussed. Replying to the defense pact between Pakistan, Turkey and Saudi Arabia, the spokesperson said the development is being closely followed. On recent defense pact between Pakistan and Somalia, Mr. Jaiswal said India continues to follow these developments closely. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India's National Public Procurement Platform, Government E-Marketplace or GEM, has achieved a cumulative gross merchandise value of over 20 lakh crore rupees in the last 10 years. GEM was launched on 9th August 2016 to transform public procurement through technology, transparency, efficiency and good governance. Addressing a press conference in New Delhi, GEM CEO Mihir Kumar said that the GEM's business has grown from 422 crore rupees in 2016-17 to over 20 lakh crore rupees now. He said that over the past decade, GEM has emerged as a cornerstone of India's digital governance ecosystem. Mr. Kumar informed that according to a study done by IIT Delhi, the items sold on GEM were cheaper on 74% items in comparison with other e-marketplace like Amazon, Flipkart and IndiaMart. He said the sellers on GEM platform have grown from around 3,000 to over 25 lakh. The Indian Cybercrime Coordination Centre has cautioned corporates and finance professionals against boss scam or CEO impersonation fraud. The Home Ministry said in a statement that there has been a sharp rise in complaints on the National Cybercrime Reporting Portal relating to the takeover of WhatsApp accounts of professionals and business persons through malicious files circulated in the guise of account statements and regulatory communications. It said that incidents following an identical modus operandi have been reported from multiple states. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi tomorrow. He will address more than 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars. Director, IIT Delhi, Rangan Banerjee said in a press conference today that the Prime Minister will present the Institute's most prestigious award, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medals to the meritorious students. Mr. Banerjee said that the Prime Minister will remotely inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at IIT Delhi's Sonipat campus. The agitation over the alleged irregularities in the JPSC, JSSC and other competitive examinations in Jharkhand continue to dominate both the assembly and the streets today. More from our correspondent.
16: On the second day of the monsoon session of the Jharkhand Assembly, the opposition raised the issue and demanded cancellation of the examinations and a CBI inquiry under the supervision of the court. Parliamentary Affairs Minister said the matter had already been discussed in the Business Advisory Committee and that the government was prepared to respond to all issues raised in the House. Meanwhile, Rahul Kranti, one of the students on a hunger strike, was admitted to Ranchi Sadar Hospital after his health deteriorated. Later in the day, a team of administrative officials visited the protest site in Ranchi. The administration said the visit was aimed at reviewing arrangements at the venue. The agitating students have released the final list of a 10-member delegation for the proposed talks with the government. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
13: The two-day BRICS Vase Bazaar 2026, organized by the Ministry of Information and Broadcasting through the National Film Development Corporation, concluded in Mumbai today. The event brought together over 900 delegates from 20 BRICS member and partner countries and witnessed more than 275 business-to-business meetings, paving the way for new co-productions, business partnerships and institutional collaborations. Our correspondent has filed this report.
8: The BRICS Waves Bazaar 2026 concluded in Mumbai today with several major international collaborations. NFTC Managing Director Prakash Magdum said the bazaar showcased the immense potential for creative collaboration among BRICS nations and reaffirmed India's commitment to the global creative economy. During the event, NFTC signed a letter of intent with Brazil's Rio Filme to strengthen audiovisual cooperation, while NFTC and the National Film Archive of India announced continued collaboration with Russia's Goss Filmo Fond. Representatives from South Africa, Russia, Thailand and Kazakhstan also announced the Global South Film Festival 2027. Sweetie Jain, Akashwani News, Mumbai.
13: The India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over Odisha and Rajasthan tomorrow. Alert has been issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi and Keralam. Northeast India, including Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Uttarakhand, West Bengal, Kerala, Mahi and Karnataka will receive heavy rain tomorrow. Meanwhile, the national capital witnessed a consistent spell of rainfall in the past 24 hours. We have a report.
17: Heavy rain.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जे ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो

तुमने सब कुछ जान लिया है और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई। दिल में

0: मुझे।
1: हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊंघते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

0: साठ के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया, वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंचपोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।
1: धीरे

0: चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार की बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थी और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतील शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतील शिफाई ने यह कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं है। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतील शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतील शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।

जी ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंख

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सके या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं बहारों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जे ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जी ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावां बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा दी।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते।

तो अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से।

श्रोताओ, आज हम आपको सुनवानी है आज की फिल्म है चल मेरे भाई। ये फिल्म 2000 में रिलीज हुई और यह एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं संजय दत्त, सलमान खान और करिश्मा कपूर। इस फिल्म के निर्माता हैं नितिन मनमोहन और निर्देशक हैं डेविड धवन। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म के कुछ गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की फिल्म है चल मेरे भाई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा

0: सभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मेम बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament.